0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:05 हो चुके हैं। आप कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा। सुबह होने ही वाली है और बाहर देखिए इतना सुहाना मौसम है। हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी बारिश और ठंडी सी हवा, और जब उसको चेहरे पर फील करते हैं तो अचानक से ऐसा एहसास होता है कि रियली ये वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो कल बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो गणपति बप्पा को मनाया, जो उनको वापस अपने घर भेजा, मुझे उम्मीद है चेहरे पर थोड़ी सी उदासी रही होगी, पर कोई बात नहीं, बप्पा फिर आएंगे। ये जो साल है इसमें जो आपने उनसे मांगा है, जो आपने खुशियाँ सबके लिए मांगी है, अपने लिए मांगी है, अपने में चेंजेस लाने की कुछ ना कुछ प्लानिंग की है, तो उसको करते रहिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको चलते रहना, इसको आगे बढ़ाते ही रहना हमारा फ़र्ज और हमारी ड्यूटी है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, रेडियो मस्ती आपके साथ हमेशा 24 आवर्स है, आपके हर सुख दुख में हम अब आपको यही बोलते हैं कि जो मॉर्निंग शुरू होने वाली है इसको बड़ी सी स्माइल के साथ, चाय के कप के साथ, अपनों के साथ बस इंजॉय कीजिए। ये पुराने गाने आपके लिए, सभी के लिए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो भेजिए 5499-1294 पर।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहाँ पे हम मॉर्निंग में लेकर आते हैं आपकी मॉर्निंग को बनाने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारे गाने और प्यारी मॉर्निंग के लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपके मैसेजेस। तो आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। 5499124 पर आप और भी मैसेजेस कर सकते हैं अगर कुछ स्पेशल कहना है किसी को। तो चलिए भाई देखिए, हमें ज़िंदगी में मॉर्निंग मॉर्निंग

0: उठने का दिल नहीं करता क्योंकि भाई कौन ब्लैंकेट से निकले, इतनी अच्छी बाहर ठंड हो रही है और उस टाइम बस हम यही सोच रहे थे काश हमें सोने को थोड़े से 5 मिनट मिल जाए, पर 5-5 मिनट करते आपको जिस टाइम निकलना होता ना उसके 5 मिनट पहले उठते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल आलस छोड़ दीजिए, थोड़े से अपने डर को, जो कई सारे डर हमने अपने दिमाग में पाले होते हैं, फालतू के होते हैं वो, उसमें कुछ खास होता नहीं है। कई बार ऑफिस से डर लग रहा होता है, कभी ऑफिस में कोई मीटिंग से डर लगा होता है, तो उस डर को भगाइए और अपना आराम से उठिए, स्माइल कीजिए, अपने परिवार के लोगों को देखिए, मिरर के पास जाइए, मिरर में अपना चेहरा देखिए। हो सकता है सुबह सुबह बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट ये बहुत खूबसूरत है चेहरा। इस चेहरे से अगर आपको ज़रा सा भी मोहब्बत और प्यार हो गया ना, तो ये आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, थोड़ा सा अपने आप को 2 मिनट 1 मिनट मिरर में देखिए, थोड़ा सा फेस क्लीन कीजिए, ओ शार्प होके बस बाहर आइए, थोड़ा सा वॉशरूम देखिए, थोड़ा सा बाहर देखिए, थोड़ी ब्रीथ लीजिए। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना अर्ली अर्ली मॉर्निंग के, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी को हम मिस कर देते हैं सोते सोते। तो जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबको हम थैंक यू बोलेंगे पहले तो, क्योंकि थैंक यू आप सबका उठने से ही तो हमें भी अच्छा लगता है आपके जब मैसेजेस आते हैं, बातें करते हैं। और कई सारे ऐसे मैसेजेस आए, किसी के बर्थडे हैं, किसी के एनिवर्सरीज हैं, हम सबके एक एक करके लेंगे मैसेजेस, पर आपको भी याद दिलाते हैं, याद करो किसी कोई ऐसे इंसान का बर्थडे ना भूल जाओ, फिर बाद में उसने कहना है सुबह सुबह अरे तुमको मेरा बर्थडे याद नहीं था। तो एंजॉय कीजिए गानों को।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: Itna husn pe huzur.

आपका साथ दे रही हूँ इस समय पूनम, और आपके जो मैसेजेस हैं दिल से निकले हुए हम तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपके थोड़े से मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद फिर से लेंगे। तो इस समय रेशमा भुगुन जी साथ दे रही हैं, आज उनके हस्बैंड का बर्थडे है, उनके दो बेटे और एक बेटी बिटिया रानी उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। और वाइफ तो कहती हैं कि भाई आपको क्या गिफ्ट चाहिए, आपको कौन सी चीज़ पसंद है। मुझे तो एक गाना पसंद है, उन्होंने जो बताया हम बिल्कुल चलाने वाले हैं, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उनकी खुशी यही है कि आपके चेहरे पर आपकी खुशी बनी रहे हमेशा, वो आपके साथ रहना चाहती हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा इस मैसेज को पढ़ के सुबह सुबह। आज कृष्णा पावर दया जी का भी बर्थडे है, 65 ईयर्स के हो चुके हैं। सुशीला थ्रुवेन मंगूरासन आसना कार्तिक सिस्टर फी दानी वीना नीला एंड ऑल नीजेस उनको विश कर रहे हैं। हो सकता है मैंने स्पेलिंग बोलने में मिस्टेक किया हो, पर उसके लिए सॉरी। पर आपको दिल से जो विशेज हैं हमारी तरफ से भी बहुत सारी और पूरे परिवार की तरफ से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। और आज शैलेश भगन जी का भी बर्थडे है, उनकी मामा शारदा दीदी अनीता सुइया बिहारी जी उन्हें विश कर रही हैं और उनको भी इतना ही कह रही हैं कि तुम बहुत खास हो हमारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारा बर्थडे आता है पर एक्साइटेड हम होते हैं, क्या बात है। अब्दुल सायरा बानो जी साथ दे रहे हैं और नसरीन जी उन अपनी दोस्त शकील केशव और नसरीन के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं जो कि इस समय फिलिंग स्टेशन पे काम कर रहे हैं। ललित जी जो कि यूएसए से साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सुरेश शर्मा साजदा जी भी साथ जुड़ी हुई हैं। नताशा जी आज अपने जीजू श्याम सुब्रन जी जो बना कैसे हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं और बेस्ट विशेज दे रही हैं। सुविधा अनीता अजीत अवी आकाश प्रतीक्षा पूजा नायरा एंड नविश और सभी बस इतना ही कह रहे हैं अपनों को कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है सभी के लिए और ये जो बर्थडे है ना आप सबके लिए खास होने वाला है। जिन्होंने मैसेज किया या नहीं किया पर हम तो ज़रूर चलाएंगे आप सबके लिए ये बर्थडे की सेलिब्रेशन हमारी पूरी एमबीसी की और आरएमटी रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे मैं

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Papa!
2: How are you, sister? How are you, my boy? How are you? Where's your mama? Party they were here, Mitak?
3: Ji? क्या उन्हें भी आना था?
2: Of course, my son. उनको बुलाने के लिए हमने कर्नल मीर को भेजा स्पेशली. वो नहीं आएगी तो पार्टी अधूरी रह जाएगी. क्योंकि आज न सिर्फ हमारी डार्लिंग शरीका का बर्थडे है पर मिसेस महेंद्र प्रताप के स्वागत के लिए सारे मेहमान और आर्मी के ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं. वो नहीं आएगी तो केक तय करेगा, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ विस्की मिलेगी. चॉइस द लिमिट.
4: लेकिन जो लोग विस्की नहीं पीते जनरल, उनके लिए?
2: उनके लिए अंगूर खाएंगे वो लोग और गाना गाएंगे. God bloody good idea! I like this idea! Well, party ko rangeen banane ke liye, kala hona chahiye, kala! Sare officers, mehman, Tarika, hum sabko ek minute ki maulat dete hai. Volunteer karo apne aap ko, aur gana gao. Aur nahi gaoge, to general gana gana shuru ho jayega.
1: Nahi, papa, aap mat kahiyega. To sab log bhag jayenge.
2: Sab log bhag jayenge? I'm sorry, love.
1: Arre, haan. सचिन बहुत अच्छा गाना गा.
2: आई रेस्क्यू पार्टी, कम ऑन लेट्स स्टार्ट सिंगिंग मैन, कम ऑन स्टार्ट सिंगिंग मैन. हैप्पी बर्थडे टू यू.
1: अंकल लेकिन मेरे छोड़ो, बहाने मत बनाओ. कह दो ना, मेरी खातिर भी नहीं, प्लीज.

0: RM2 Radio Musti. Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:47 हो चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं आपके राशिफल के लिए। और हर सुबह काम की लिस्ट लेकर नहीं आता, मॉर्निंग लेकर आता है बहुत सारे मौके, कोई प्यारी सी मुलाकात, कोई नया सा आइडिया। तो थोड़ा सा वक्त इस हॉरोस्कोप को दीजिए और सुनिए, सबसे पहले जानते हैं किसकी राशि में क्या चल रहा है।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज किसी काम में पहला कदम आप उठाइए, आपकी पहल से बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं। शाम तक एक छोटी अचीवमेंट खुशी देगी। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 3।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज अपनी किसी आदत को फिर से शुरू कीजिए। पैसों को लेकर कोई प्रैक्टिकल आइडिया काम आएगा। घर के किसी सदस्य की सलाह भी सुनिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज कोई नई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स के लिए सवाल पूछने और समझने का अच्छा दिन है। किसी दोस्त के साथ हल्की फुल्की बातचीत मूड बना सकती है। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज किसी अपने को आपकी ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपके दो अच्छे शब्द उसका हौसला बढ़ा देंगे। अपनी खुशी और आराम को भी बराबर जगह दीजिए। लकी कलर है वाइट, लकी नंबर है 4।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज अपनी बात कहने का अंदाज असरदार रहेगा। काम में कोई आपकी राय को महत्व दे सकता है। जहां तारीफ बनती है वहां दिल खोलकर कीजिए। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।

0: वर्गो कन्या राशि। आज छोटी चीजों को व्यवस्थित करने से बड़ा फायदा होगा। एक पुराना पेंडिंग काम आखिर पूरा हो सकता है। दिन में कुछ मिनट फोन से दूर रहिए, थोड़ा सा किसी के साथ मीठा बोलिए, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अपने काम में बहुत बिजी रखा हुआ है अपने आप को, तो थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए निकालिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज किसी रिश्ते में खूबसूरत वार्मथ महसूस होगी। साथ मिलकर लिया गया फैसला आपकी बेहतरी के लिए होगा। हो सकता है आज कोई आप एंगेजमेंट या वेडिंग के लिए कुछ प्लानिंग करें। किसी अपने के लिए छोटा सा सरप्राइज भी बन सकता है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 2।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज अपनी क्षमता को थोड़ा सा चैलेंज दीजिए। कुछ ऐसी कीजिए जो पहले मुश्किल लग रहा था। आपकी हिम्मत देखकर कोई भी आपको मोटिवेट हो सकता है। लकी कलर बनेगा आपका पर्पल, लकी नंबर है 7।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज थोड़ा रूटीन से थोड़ा सा बदलाव कीजिए। नई जगह, नया खाना या नया एक्सपीरियंस आपका मूड बनाएगा। बस खर्च करते समय जेब पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, और आपके लिए भी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको आने दीजिए अपनी ज़िंदगी में। लकी कलर बनने वाला है आज आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम दिख सकता है। काम में आपकी कंसिस्टेंसी आपकी ताकत बनेगी। शाम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, परिवार भी याद रखिए। आपको बहुत प्यार सभी की तरफ से मिल रहा है आज। लकी कलर बनने वाला है ग्रीन, लकी नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज दिमाग में आया कोई आइडिया संभाल कर किसी को दीजिएगा। हो सकता है कि कोई आपके आइडिया से अपनी ज़िंदगी बनाए, पर आपका आइडिया बहुत खूबसूरत होने वाला है। हो सकता है आप उस पर कुछ काम करें और आपका बिजनेस आगे बढ़े। आगे चलकर वही जो आइडिया है, आपकी शुरुआत कुछ नई तरीके से बन सकती है। तो किसी साथी की मदद लीजिए, अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मदद लीजिए जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकें कि आप उसको आइडिया को प्रोसेस कैसे कर सकें। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज अपने मन को किसी छोटी सी इच्छा का सम्मान दीजिए। आपके मन में कोई इच्छा आ रही है, कुछ चीज़ आपको खरीदनी है, तो आप उसका वेट मत कीजिए। अपने ऊपर स्पेंड कीजिए 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया, जो आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, पर अपने ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि आज आपका मन उसके बाद क्रिएटिविटी में जाने वाला है। और हो सकता है कि वही जो स्पेंड आपने चाहे ब्रशेज में किया हो, मेकअप में किया हो, वो आपको आपके बिजनेस की ओर लेके जाने वाला है। तो किसी अपने का साथ मिलने वाला है, आपको कोई बिजनेस मिलने वाला, आपके परिवार वाले आपको फुल सपोर्ट देने वाले हैं। लकी कलर बनेगा आज आपका पिंक, लकी नंबर है 6। तो दोस्तों, आज जो समय है आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अपने हॉरोस्कोप के साथ आगे बढ़िए और एंजॉय कीजिए गानों को।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: का घी।
1: रेडियो मस्ती
0: नॉर्थ साउथ
1: 103.5
0: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4
0: सेंटर
1: 99.4
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: टाइम चेक सुबह के 6 बज रहे हैं 16 सितंबर वेंसडे का दिन आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाई चलाई इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं जबकि 1800 मामलों की जाँच अभी भी जारी है कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते एसीसी के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से सुर्खियों में हैं एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एसीसी के निदेशक संजय दाऊदारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था जिसमें 2 गोलियां थीं और धमकियों से भरा एक पत्र था ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती है लेकिन ये जेगो गौसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर काम कर रहा है खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में मॉरिशस जहां यूके और मॉरिशस के बीच शागस समझौते को लागू करने पर काम किया जा रहा है वहीं ये नई स्थिति जेगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नेवल माइंस से टकरा गया था जिससे उसमें आग लग गई आखिर में स्थानीय मौसम का हाल आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी मस्कारिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान खासकर देश के दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं रह कर हल्की बारिश होगी हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं ऊंचाई वाली जगहों और सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों से गुजरते हुए खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी जिनका असर कुछ तटीय इलाकों और लगूनों पर भी पड़ेगा इससे मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से खास सावधानियां बरतने और इन लगूनों और तटीय इलाकों में न निकलने की सलाह दी जाती है तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहेगा सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15 अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20 अधिकतम 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सुबह 6:05 पर सूर्योदय शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा ये थी अब तक की खबरें हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:11 हो चुके हैं, 24 आवर्स साथ देने वाला MBC, ये हमारा RM2 रेडियो मस्ती हमेशा जो आपको सिर्फ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातों के साथ में उलझाए रखता है, बस आपके मैसेजेस का वेट करता है कि कब आप मैसेजेस भेजें और हम वो पढ़ सकें। तो चलिए दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। धनेश्वर जी साथ दे रहे हैं अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ और उनका परिवार उनके साथ ही जुड़ा हुआ है इस समय और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। हेमलता भूजन जी अपने पूरे परिवार और साथियों के लिए सबको इतना ही कह रही हैं, आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए और इलायची वाली चाय पीने के लिए आ जाइए। तो आप सिर्फ हमसे पूछ रहे हैं या पूरे मॉरिशस को पूछ रहे हैं? अगर पूरा मॉरिशस आ गया तो आपका मैं क्या कहूँ, इतनी चाय बनानी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी एक ना एक दिन। निशा जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। मालिनी जी साथ दे रही हैं, डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा और सभी आपादू फैमिली के लिए बेस्ट विशेज मांग रही हैं। जयशन जी साथ दे रहे हैं और अपने पूरे स्टाफ के साथ में बेस्ट विशेज के साथ आए हैं। कविता जी ग्लेन पार्क से, हसमुख चाचा, राधा चाची, अज्जी ग्लेन पार्क से साथ दे रहे हैं। सुधीर जी और प्रियंका जी साथ दे रहे हैं। रवि जी इंडिया से साथ दे रहे हैं। ललिता जीतन जी, लेट अटेंडेंस, आप लेट हैं तो कोई बात नहीं। बिडवाग विदेशी जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और अपनी जान के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। बट हम तो आपको ये कहेंगे गाने सभी आपके पसंद के हैं, पर ये जो नेक्स्ट गाना है ना, इसको मॉर्निंग मॉर्निंग सुनने में मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी मजाकिया है पर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। इन्जॉय कीजिए गानों को, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जुड़ पाएंगे अपने पूरे विस्तार से समाचारों के साथ।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

मस्ती करते तो मेरा का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगी तक तुमको डिस्क नारियल दिखाएगी। अच्छा बात कर रहा है।

तुम सबकी घंटी बज जाती। आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, आई एम नारियल पानी वाला, ने कृष्णन अय्यर यम्ये, कोबरी बोंडा डिस्को छुड़ छुड़।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगोगोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। स्कूली छात्रों के लिए सार फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर होगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा की सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों की 200 छात्र शामिल होंगे। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों और मालिक वर्ग का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाइयां चलाई हैं। इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच अभी भी जारी है। कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते FCC के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से सुर्खियों में हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान FCC के निदेशक संजय दाउधारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था, जिसमें 2 गोलियां थीं और धमकियों से भरा एक पत्र भी था। ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं। संजय दाउधारी को सुनते हैं।
1: Parce que je t'intimide moi pour ban drone. Il faut pas vous connaître. Moi j'ai un ban drone bien normal partout. Et quand vous guettez, ben j'ai une photo mon la case depuis là-haut. Un jour, elle s'est même fait des avis contre moi parce qu'il s'est compté drone pour faire les tours contre moi là.
0: पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती है, लेकिन ये जेगोगोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। इस दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रही संघर्ष के संदर्भ में। जहां मॉरिशस और UK शागस समझौते को लागू करने पर काम कर रहे हैं, वहीं ये नई स्थिति जेगोगोसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है।
2: नतीजा साफ है। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के लिए जेगोगोसिया बहुत जरूरी बना हुआ है। पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये बेस अमेरिकी नौसेना के लिए समुद्री लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा केंद्र बन गया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद वाशिंगटन को अपनी कुछ सप्लाई लाइनों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा और इस ढांचे में जेगोगोसिया का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि कानूनी जरिए से इससे मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते में कोई बदलाव नहीं आता है। मॉरिशस अभी भी शागस पर अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम के पास जेगोगोसिया बेस को चलाने के लिए जरूरी अधिकार बने रहेंगे, जिसका इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट रणनीतिक संदर्भ को बदल देती है। जैसे जैसे संधि को लागू करने पर बातचीत चल रही है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जेगोगोसिया से जुड़े सुरक्षा, निगरानी और सैन्य पहुंच के मुद्दों पर और भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इस चरण में पेंटागन की रिपोर्ट समझौते में किसी बदलाव की मांग नहीं करती। मध्य पूर्व के मौजूदा हालात में अमेरिकी सैन्य अभियानों के जरिए जेगोगोसिया बेस और भी ज्यादा अहम हो गया है।
0: स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस नामक ये प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस प्रोग्राम का मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई करेंगे, जिनका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहनशीलता, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

0: ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। इस पर शैक्षिक सलाहकार रितेश राव पुलिया अपना विचार दे रहे हैं।
1: ये प्रोजेक्ट जिसको हम नागरिक मूल्यों सिविक वैल्यूज या नागरिक शिक्षा सिविक एजुकेशन कहते हैं बहुत अच्छा है। हमारे देश और विशेष रूप हमारे स्कूलों बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों जरूरी है? हमने ये समझना है कि जरूरत है कि आज के समय में मोरल वैल्यूज जो पहले बच्चों को घर पर मिल रहे हैं अब वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि आज के परिवारों में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं और हमें देखा है कि बच्चे के इन संस्कारों को खोने लगे हैं। ये मॉरिशस के संस्कृति के मूल आधारों से जुड़ा है, इसलिए इसका होना महत्वपूर्ण है। वातावरण स्थिति और उद्देश्य ये पहले जिस 14 दिनों के एक पायलट प्रोजेक्ट को रूप में शुरू कर रही है जिसमें हर 100 लड़के और 100 लड़कियां शामिल है, लेकिन इसके हमें ये समझना है कि मदद मिल रही है कि ये प्रोजेक्ट को भविष्य में बदला जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि सिंगापुर में सिविक एजुकेशन का प्रोजेक्ट बहुत सफल रही है। सिंगापुर आज दुनिया में अपने डिसिप्लिन नैतिक मूल्यों और स्कूलों बच्चों को संस्कारों के लिए जाने जाता है।
0: कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में बंदरगाह के अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिम्युलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना। विधिमासी बुरान
2: नू पे अपस्किल नू बन एम्प्लॉय नू पे ट्रेन नू बन प्रोपर एम्प्लॉय डायर ल गवर्नमेंट इंडियन इन फे एन डोन ग्रास एन डिमांड डे सा डे डू प्रीमियर मिनिस्टर एन डोन डे सिम्युलेटर।
3: हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मांग पर भारत सरकार ने एक सिम्युलेटर दान में दिया है जो अक्टूबर महीने में पहुंचेगा। इस सिम्युलेटर की बदौलत हर तरह की बंदरगाह कार्रवाई की जा सकेगी। हम खुद अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे, हम इसमें निवेश करेंगे। डिजिटलाइजेशन के स्तर पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसके माध्यम से गुजरना ही पड़ेगा। उद्देश्य ये है कि जनवरी 2028 में जब उपकरण आएंगे तब हमने बंदरगाह को पूरी तरह आधुनिक बना दिया है।
2: Nous obliger par ce pas-là. Et moi, l'objectif, c'est en janvier 28, quand les équipements arrivent, nous modernisons le port totalement.
0: याद रहे कि बंदरगाह के लिए नए क्रेन की खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन ने 7 सितंबर को पोर्ट लुइस में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए 2.7 बिलियन रुपयों के निवेश की घोषणा की गई है। इस परियोजना के लिए दूसरा चरण भी निर्धारित है जिसके तहत नए उपकरणों की खरीद की जाएगी और उसका पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करेगी। विधि मासी बोलन
3: पहला चरण 2.7 बिलियन रुपए में पूरा हुआ है। दूसरे चरण में 1 मेगामैक्स, 8 ओटीजी, 8 रिच टैकर और 26 ट्रेलर इंफ्रक्टर्स हैं। भारतीय सरकार पूरी तरह से दूसरे चरण की फाइनेंसिंग करेगी। अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।
0: यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ताओं ने मॉरिशन समंदर में उतारे गए जहाजों की मलबों पर एक अध्ययन चलाया है। ये बात सामने आई है कि मलबे लंबे समय तक पानी में रहने वाले मलबे मछलियों का आश्रय बनते हैं, जबकि नए उतारे गए मजबूत मलबे कोरल्स के विकसित होने के लिए उचित जगह बनते हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी देखा है कि किस प्रकार इस्तेमाल न किए जा रहे जहाज़ों को समंदर में स्थापित किया जाए ताकि जैव विविधता के संरक्षण में भी प्रयोग में लाए जा सके। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसा कि प्रोफेसर रंजीत बागुली बताते हैं।
4: जो मलबे
0: कम गहराई में हैं और जिनमें

पर्याप्त रोशनी है वे ज्यादा इकोलॉजिकल हैं। हमने देखा है कि जो मलबे हमारे समंदर में लंबे समय से मौजूद हैं उनकी स्थिति समय के साथ खराब पड़ती जा रही है। ऐसे मलबों में ज्यादा मछलियां होती हैं, जबकि जो नए मलबे होते हैं और जिनका ढांचा अभी भी मजबूत है उनमें ज्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। नए मलबों में ज्यादा कोरल्स विकसित होते हैं क्योंकि उनका ढांचा मजबूत होता है, जबकि जो जहाज लंबे अरसे से पानी में हैं वे मछलियों के रहने के लिए उचित जगह और माहौल बनाते हैं। इनका अध्ययन करने से हमें पता चल पाएगा कि हमें कैसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिससे हम ऐसे जहाजों के मलबे समंदर में उतार पाए जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, इससे उनका उचित पुनः इस्तेमाल हो पाएगा। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना होकर मासिक तौर पर 20 रुपए से 40 रुपए होगा। एम्प्लॉयरों के लिए ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए होगा, जबकि स्वतंत्र कलाकारों का योगदान 80 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे जिसके लिए 14.5 मिलियन रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है। ये ग्रांट्स शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट और विदेश में चिकित्सा सहायता जैसे खर्चों के लिए उपलब्ध हैं। सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक मेंबरशिप कार्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करेगा। शैली नियबन की रिपोर्ट। ये बदलाव सिर्फ योगदान यानी कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित नहीं है। बढ़ाई गई सुविधाओं में शादी के लिए दिए जाने वाले ग्रांट को बढ़ाकर 7,000, मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता 15,000 और मृतक के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए हो गई है। छात्रवृत्ति ग्रांट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए हो गया है, जबकि शिक्षा के लिए मिलने वाला ग्रांट एससी के लिए 7,500 और एचएससी के लिए 15,000 रुपए हो गया है। रिटायरमेंट ग्रांट दुगुना होकर 15,000 रुपए हो गया है और विदेश में इलाज के लिए विशेष मेडिकल सहायता 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई है। पेरेंटल गिफ्ट यानी माता पिता के लिए मिलने वाला तोहफा ऐसी सुविधा है जिसके लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सबसे ज्यादा यानी 600 लोग हैं। इसकी तुलना में शादी के लिए ग्रांट के लाभार्थी 450 और रिटायरमेंट ग्रांट के लाभार्थी 200 हैं। कुल मिलाकर इन 11 सुविधाओं पर 14.5 मिलियन रुपए का खर्च आता है। टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक ऐसा कार्ड भी लॉन्च कर रहा है जिससे कुछ खास पर्यटन स्थलों और होटलों में खास दरों यानी प्रेफरेंशियल रेट्स का फायदा मिल सकेगा। साथ ही सदस्यों को जानकारी देने और उनके आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसके बाद दो नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा के झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नेवल माइंस से टकरा गया था जिससे उसमें आग लग गई। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। इनका असर कुछ लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इससे समुद्री गतिविधियों में संलग्न ऑपरेटरों और मछुआरों तथा

आम जनता से मांग की जाती है कि इन लगूनों और तटीय इलाकों में भी न जाएं। तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:05 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर पेंटागन की नई रिपोर्ट शागर समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती लेकिन ये जेगो गोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। स्कूली छात्रों के लिए इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र इसमें शामिल होंगे। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों और मालिक वर्ग का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, इसके बाद दो नाविक लापता। देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 years old श्रीमती कुलमती बदाय, पैदाशी नाम अलगू, जो बर की मामा बदाय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हमारी सहयोगी निर्मला की माँ थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री विदेश बदाय के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डी आफ्टरनून। तागो लेन एस्पेरेंस कॉटिये मिलिटेयर में 40 साल की 40 years old श्रीमती वरुणा बर्ना, पैदाश नाम रघुनंदन, जो वरुणा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके ससुर श्री सुरुज बरना के मकान तागोलेन एस्पेरेंस कॉटिये मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्देमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड थ्रियोले में 64 साल के 64 years old श्री अभिदानंद परलाकी, जो राजेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता परलाकी के मकान महात्मा गांधी रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 8:00 PM। मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोरल में 83 साल की 83 years old श्रीमती लीलावती बिहारी, पैदाशी नाम बख्तवर, जो बलफाम नीनेत नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ऑचर्गियम गली बोवालो में 76 साल की 76 years old श्रीमती देवीवंती बलोराम, जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान ऑचर्गियम गली बोवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। डॉक्टर बेनेडिक्ट रोड लेस्पेरेंस पीतो में 78 साल के 78 years old श्री प्रेमदत्त चरण

श्री प्रेमदत्त चरण जो प्रभु नाम से सारा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके बेटे श्री कवि चरण के मकान डॉक्टर बेनेडिक्ट क्रोध लेस्वे हॉस्पिटल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुड लेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 9 AM। महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में 90 साल की 90 ईयर्स ओ श्रीमती जसमत सिंह चंद पैदाशी नाम बिशेसर जो जयंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 11 AM। Princesse Margaret Lane, Petite Rivière, Navasi Sal, qui est 9 years old, Shmati Bidoti Chanto, Dushanti Bhagmar, Nam se zara jani jati thin, ki mrityu ho gayi hain, ki arthi आज दिन की 10:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 10:30 बजे इनके बेटे श्री किशन लाल भगमर के मकान प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेजी त्रिविय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सेंट पियर बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू 10:30 AM। हिबिस्कस रोड लागोलत में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बीकू इसराम जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री जोशन इसराम के मकान इबिस्कस रोड लागोलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियन वॉक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। क्रिमिशन रोड कांटोरेल में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड श्री धनपत गनोरी जो दीपलाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री सत्येंद्र गनोरी के मकान क्रिमिशन रोड कांटोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांटोरेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। शैनफील्ड रोड रिविया जो पॉमे 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड श्री रामचंद्र जोई चेकमैन से अंति नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी जोई के मकान शैनफील्ड रोड रिविया जो पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। बंते अवाकुआ में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की कुमारी रूमिला राम जो बरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके भतीजे श्री भवेश राम के मकान बंती अवाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम गजाधर जो शीला नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे लशा पेलोदों तिलियनसंस रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM। रॉयल रोड बॉशेरी में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजय देव सिंह गोपाला जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बॉशेरी चाय कारखाने के पूर्व सरदार थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 9:00। कादिया बाबा लेन लिस्कालिये में

0: 50 साल की, 50 years old की कुमारी चंद्रावती प्रेमचंद, श्रीमती चंद्रानी प्रेमचंद, जो प्रतिमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज सुबह 9:30 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनकी माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के मकान कादिया बाबा लेन निस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: गुड मॉर्निंग, 7:04 हो चुके हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये जो प्यारा सा मॉर्निंग का जो टाइम है, जहाँ पे ठंडी हवा, म्यूजिक का बढ़िया सा तड़का और मूड को फ्रेश करने वाला जो टाइम है, यानी कि मॉर्निंग बीट में, इसमें गाने जो चलते हैं ना, बहुत ही मस्त मस्त चलने वाले हैं। क्योंकि हम तो आपको इतना ही कहेंगे, क्योंकि आप बिजी रहे होंगे, ये 2-3-4 दिन जो पीछे रहे होंगे, अब थोड़ा सा ट्रैक पे वापस आना है, काम पे जाना है, और काम पे जाने से पहले थोड़ा सा मूड बनाना है। तो मूड बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे इस प्यारे से जो रेडियो मस्ती का जो ये वाला टाइम है ना, और जो ये प्रोग्राम है मॉर्निंग बीट में, जंगल में बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे से गाने हैं जहाँ

0: जहां पर आपको एक एक करके आपके मूड को रिफ्रेश करेंगे, आपको बनाएंगे और आपको कहेंगे इतना ही कि आप सिर्फ स्पेशल इस प्रोग्राम को सुनते हैं जहां पे हम बहुत सारे आपको गिफ्ट्स देते हैं, वाउचर्स देते हैं, आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपको भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है हमारे ज़रिए, तो आपको मैसेज करना है 5499124 पर और उनका प्यारा सा नंबर ज़रूर भेजना है जहां पे आप हम उनको सरप्राइज़ दे सकें। और साथ में आपको कहेंगे कि भैया गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। बहुत सारे लोग तो काम पर निकल गए हैं, पर जो नहीं उठे हैं या जो अभी अभी उठे हैं उन्हें बस इतना कहेंगे गर्म गर्म चाय पियो, नाश्ता करो और फिर हमारे साथ हमारे इस जंगल के सफ़र में साथ चलो।
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: Enzo, mo bou arrange mo la case. Enzo, mo bou faire innovation. Sa zoula, c'est côte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7-6 apprises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, côte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
3: Dans quelques heures, les machines du loto feront leur show. Approximativement 15 millions de roupies au loto et environ 21 millions de roupies au loto plus. 21 millions de roupies au loto plus. La chance n'a pas sa place sur la route. N'accélérez pas, ralentissez. Mieux vaut arriver quelques minutes plus tard que prendre un risque inutile. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
4: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2 Radio Musty.

0: Show.
1: Come on. RM2.
2: Radio Musti.
3: सात बजकर 18 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मॉर्निंग बीट के साथ में। और जो इस समय ट्रैफिक में है, बस टेंशन मत लो। RM2 मॉर्निंग बीट आपके लिए क्यों आता है? सिर्फ इसीलिए आता है आपका मूड चेंज करने के लिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वॉल्यूम बढ़ाना है, गाड़ी में आराम से बैठना है, इंजॉय करना है। स्टेयरिंग को देखो, सीट्स को देखो, इतनी प्यारी जो गाड़ी आपने खरीदी हुई है, जितने पैसे खर्च किए हुए हैं आपने, उसको थोड़ा सा एडमायर करो, थोड़ा सा मस्ती के मूड में आओ। काम पर जाना है भाई, बहुत सारा पैसा कमाना है। जिन्होंने पैसा आना होना होता है ना, तो उसको पहले अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लानी है। तो आप अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आओ और जो नेक्स्ट आएगा ना, आपका रेड लाइट आएगी, उस तक बस बड़ी सी स्माइल रखना। और जो भी आपको सामने दिखे, कोई भी दिखे, उसको बस बोलना है, अरे मन में बोलना है पैसा कमाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पर आपके लिए गुड मॉर्निंग। चलिए जी, इंजॉय कीजिए। ये गाना बहुत ही प्यारा सा है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे साथ चिल्लाना है आपने ये गाना गाते गाते।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Sirk Zavata à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vinguez Sirk Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oubliez eux. Nous avons un package spécial pour eux. Avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 50 94 13.
3: Moments that matter with Sikom.
4: जिंदगी बहुत हाली आगे बढ़ेला हमनी के प्रोजे लॉबिशियों आज सपना जो हमनी देखी लाचा उस सब खातिर आज लेवल गल फैसला काल जाके बहुत अंतर करी तोहर कौ ये आगे बढ़ता तोहर लॉबिशियों भी बड़ा हुआ था और आप अपन भविष्य के बारे में सोचा था वा पर काल जो लम्हा तुहर खातिर मायना रखी उकर खातिर एमएससी करे के बारे में सोच ले हव एगो लाइफ इंश्योरेंस ई खाली तुहर परिवार खातिर सुरक्षा नहीं है बल्कि ई एगो बचत करे के अपन पैसा के फलित करे के और भविष्य खातिर आर्थिक रूप से तैयार होई के तरीका है एगो मकान किने के परियोजना लड़का के पढ़ाई एगो सुखद रिटायरमेंट या पूरा शांति से तुहर प्रोजेक्ट के साकार करे के छूट सिकोम के प्रस्तावित जीवन बीमा के संगे आप सब आज ही से जैसन खुशी अपन भविष्य बनाए काहे कि काल के बेहतर पल तुहर आज की तैयारी पर निर्भर बा सिकोम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikom.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: इट वाज मोमेंट्स दैट मैटर विद सिकोम
5: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners! Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners!
6: Et promotion, bidoun balle! 500 grammes carottes pour 11,95 €! 250 grammes salade crudité pour 89,95 €! Un bucket 500 grammes raisin Red Globe pour 99,95 €! 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 109,95 €!
5: Pas de prix là! Bazaar, Moudirou! Rendez-vous Got Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar!
7: On est tous winners!
0: RM2
1: Radio Musti

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: 7:28 हो चुके हैं और अभी आप ऑफिस तो पहुंचे नहीं होंगे. बहुत सारे पहुंच गए होंगे पर कई, मतलब अभी तो 9 बजे शुरू होता है ना, तो बहुत जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप चिंता मत करो, चाहे आपकी मीटिंग की चाहे आपके काम की, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है. कभी किसी ने मुझे बोला था हर चिड़िया के लिए दाना बना हुआ है, तो हम भी आपको ये कहेंगे बिना टेंशन के लिए आगे चलो और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा. और आपको इतना ही बोलते हैं, जो चिंता होती है ना बहुत टेंशन वाली होती है, तो इसलिए इसको हटा के आप सारे काम करो. और जब घर से निकल रहे हो या घर में जब उठे हो तो आपको हम सब हमेशा कहते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करा करो, 5 मिनट करो, चाहे 2 मिनट बेड पर ही एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपने स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो. अब जो ड्राइव कर रहे हैं अब उनका क्या, अब आपको हम इतना ही बोलेंगे जैसे ही आप ऑफिस पहुँचना आपने चाय वाय जो लेनी है कॉफ़ी का वेट करना, पर उससे पहले थोड़ा सा अपनी आँखों को एक्सरसाइज दीजिएगा, थोड़ा सा शोल्डर को मूव कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का मूव करेंगे ना आपको रियली में अच्छा लगेगा. और अगर 2-3 घंटे के बाद फिर से इस एक्सरसाइज को करेंगे, थोड़े से पैरों को स्ट्रेचिंग करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आंखों के लिए अच्छा रहेगा. पूरे दिन तो आपने स्क्रीन के पास बैठे रहना है और उसमें थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं सोचो तो ये तो गलत बात हो जाएगी. तो चलिए भाई, गानों के साथ यही हम कहेंगे, चिंता किसी भी चीज़ की मत करो, इन्जॉय करो, मस्ती से जाओ, स्माइल करते हुए जाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से पीजिए. ये गाने आप सबके लिए हैं. ये आरएम टू रेडियो मस्ती हमेशा मॉर्निंग में आपको सिर्फ इतना ही कहता है, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना.
0: मॉर्निंग बीट. ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स. अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: आरएम2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: La Early Childhood Care and Education Authority informe les parents que les inscriptions dans les écoles préscolaires publiques pour l'année 2027 se tiendront du 7 au 30 septembre 2026. Tout enfant âgé de 3 ans au plus tard le 31 décembre 2026 est éligible à l'admission. Les inscriptions se feront dans l'école préscolaire publique la plus proche du domicile, de 9h30 à 11h30 et de 13h à 14h30. Les parents devront se munir de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant et d'une preuve d'adresse. Les places seront attribuées en priorité aux enfants résidant le plus près de l'école. Les demandes reçues après le 30 septembre 2026 ne garantissent pas l'admission dans l'école choisie. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Early Childhood Care and Education Authority, ECCEA, au 460 42 78.
3: एगो लाश्योरेंस लावी कोंची है जी काल कुछ तोहरा हो जाए ते ई तोहर आर तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे संगबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लाश्योरेंस लावी में जाए आ दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फॉर्म में संगबा एवेसी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसन लाश्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
4: Sikkim Group, a lifetime commitment.
5: Dans quelques heures, les machines du loto feront leur show. Approximativement 15 millions de roupies au loto et environ 21 millions de roupies au loto plus. 21 millions de roupies au loto plus. La chance n'a pas sa place sur la route. N'accélérez pas, ralentissez. Mieux vaut arriver quelques minutes plus tard que prendre un risque inutile. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
6: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 7:43 हो चुके हैं और ज्यादा वेट ना करते हुए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में. स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है सीधा जानते हैं अरविंद हमारे स्पोर्ट्स गुरु से. तो गुड मॉर्निंग अरविंद आपको.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आर्सेनल और लिवरपूल कराबाओ लीग कप में मैच जीत पाए और अगले राउंड में कदम रख पाए. लिवरपूल में अनुभवी खिलाड़ियों का शो रहा तो आर्सेनल में युवा सेंसेशन डोमिन का जलवा. इप्सविच 2 आर्सेनल 4. युवा स्टार खिलाड़ी मैक्स डोमिन 2 गोल स्कोर कर पाया. इस सीजन यह उसका पहला मैच रहा. केवल 16 साल का है. उस पर मैदान में पटाखा आई कैचिंग परफॉर्मेंस. बाकी 2 गोल माडुएके और मेरिनो के नाम. आर्सेनल की तरह लिवरपूल भी चौथे राउंड में पहुंचा. टोटनहम हॉटस्पर को हराकर यहां मंजे हुए अनुभवी खिलाड़ी मैच जीत पाए और लाजवाब गोल रहे. पहला अलेक्सी मैकालिस्टर का, फिर कोडी गाक्पो का गोल, तीसरा गोल स्कोर किया ज़ोबोस्लाई ने एक जबरदस्त शॉट पर. टोटनहम हॉटस्पर ने वैसे इस सीजन अपना पहला गोल स्कोर किया कोनो गलागह के जरिए. फिर गोलकीपर मामा दाशविली ने काफी बार लिवरपूल को रोका, लिवरपूल को बचाया और स्टॉपेज टाइम में ज़ोबोस्लाई का टिपिकल मार्की शॉट, शॉट अला जेरार्ड जैसे बताया. लिवरपूल 3 टोटनहम हॉटस्पर 1. बाकी नतीजे, पीटरबोरो 3 बाउंसले 3. पेनाल्टी पर पीटरबोरो की टीम क्वालिफाई. वेस्ट हैम यूनाइटेड 2 फुलहम 3. फिर रेडिंग 1 ब्रेडफोर्ड 2. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में भी कल मैच खेले गए. फाल्कर्क 2 हार्ट्स 1. इबेनियन 0 किलमोनो 1. मदरवेल 0 अबर्डीन 4. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी 0 लिंकन सिटी 1. मिडल्सब्रो 2 मिलवॉल 2. कराबाओ लीग कप की बात करें फिर से, आज मैच खेले जाएंगे एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड टाउन शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री सिटी एस्टन विला और 11 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन. स्पेन के ला लीगा में रायो वालेकानो 2 स्पैनियल 1. अलावेज 0 वेलेंसिया 1. रियल मैड्रिड को जमीन आसमान 1 करना पड़ा एल्चे को हराने में. 3-2 से रियल मैड्रिड की जीत. एक ऑन गोल, एक एम्बापे का गोल, फिर कार्लोस एस्पी ने इंजुरी टाइम में जीत दिलाई रियल मैड्रिड को. आज के मैच, एथलेटिको मैड्रिड ओसासुना, डेपोर्टिवो सेविला, बार्सिलोना रेसिंग सांतांडर, लेवेंटे एथलेटिक क्लब. कोपा इटालिया में भी कल 2 मैच

0: लेगे जेनोआ 1-0 से जीत पाया और फ्लोरेंटीना भी अपना मैच जीत पाया 3-0 से। यूरोपा लीग के लीग स्टेज के मैच आज खेले जाएंगे। एसी मिलान का मुकाबला बेनफिका से होगा, अंडेले लियों संडरलैंड अल्कमार, ये कुछ महत्वपूर्ण मैच हैं, और कल क्रिस्टल पैलेस लेच पोजनन, रियल सोसिएदाद बोर्नमुथ। मैनचेस्टर डर्बी गोल विवाद पर बात जारी है। रेफरी चीफ हावर्ड वेब ने स्वीकार किया कि वह एंजो फर्नांडेज के ऑफसाइड को नहीं देख पाया। वेब ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह अलोन के पोजीशन पर सुपर फोकस्ड हो गया, एंजो को भूल गया। फिल फोडेन के रेड कार्ड पर वेब ने रेफरी के फैसले का समर्थन किया, कहा सही है। और उसी एक्शन में ब्रूनो फर्नांडेज के लात से मारते हुए उसको पेट्रुलेंट कहा, नो एक्सेसिव फोर्स और ब्रुटालिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का 15 साल का प्रोडिजी जे जे गैब्रियल, जिसे आने वाले सालों का स्टार खिलाड़ी कहा जा रहा है, द रेड डेविल्स को छोड़ना चाहता है। जे जे गैब्रियल के इस फैसले से यूनाइटेड वाले शॉक में हैं। कहा जा रहा है जे जे गैब्रियल जाना चाहता है क्योंकि उसको कम खेलने का मौका दिया जा रहा है। क्रिकेट, एक और आसान जीत भारतीय टी20 टीम के नाम एजीटी के खिलाफ, यानी अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। केवल 15 ओवर में 7 विकेट से भारतीय टीम की आसान जीत। टॉप स्कोरर हस संजू सैमसन 57 रन। भारतीय टीम ने फ्रेंडशिप कप जीत ली, जिसे अफगानिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया, पर मैच दिल्ली में खेले जा रहे हैं और एक मैच खेलना अभी बाकी है। लोकल स्तर पर एयर बैडमिंटन टूर्नामेंट युगांडा में आज से शुरू, 16 से 19 सितंबर तक ये टूर्नामेंट लगेगी। इस एयर बैडमिंटन टूर्नामेंट में मॉरिशस से आतिश लुबा, गिरीश रामप्रसाद, तमीश दुक्की, तमीश बोयहू, कोबिता दुक्की, सिमरन अंचहाज, शाहोन योंग, अंशुला साहू भाग लेने गए हैं। पिछली बार 2 गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, इस बार और उम्मीद है। आज 2 मैच मॉरिशस के नाम। ब्राजीलियन जिउजुत्सु का वर्ल्ड चैंपियन, हमारा हमवतन मॉरिशस का अजमल बोजल का कल धूमधाम से स्वागत किया गया। टोक्यो में अजमल बोजल चैंपियन बना था। इसके अलावा मॉरिशस की टीम अपने साथ 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल ले पाई थी, टोटल 13 मेडल। बधाई हो सभी को, खासकर अजमल बोजल को। इधर कोसाफा अंडर 20 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हमारे युवा फुटबॉल खिलाड़ी मोजाम्बिक जा रहे हैं। और अंत में ये अजीब घटना, श्रीलंका के जावलिन वर्ल्ड चैंपियन रुमेश तरंगा के 4 जावलिन हवाई जहाज में टूट गए। डायमंड लीग और बाकी चैंपियनशिप में चैंपियन बनने के बाद वो कोलंबो लौट रहा था, ट्रांजिट के साथ तो उसके जावलिन टूट गए। जिस जावलिन से उसने अपना रिकॉर्ड बनाया था, यानी 93 मीटर 62 सेंटीमीटर, वो भी नहीं बचा। श्रीलंका की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि सरकार के खर्च पर उसके जावलिन, उसके हीरो को नए प्रोफेशनल जावलिन दिए जाएंगे। कहते ना कि टूटे बियां की फिनी बियां, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। और भलाई इसी में है कि आप भी थोड़ा स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कीजिए, हेल्थ इज वेल्थ कहते ना, सो कीप ऑन गोइंग एंड हैव ए गुड स्पिरिट, गुड वीक अहेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, बाय बाय।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:53 हो चुके हैं दोस्तों, और हमें हमारा वो मिल गया जो जिसका आज बर्थडे है और उसे पता भी नहीं है। चलिए सीधा उनके पास ही जाते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं और पूछते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। सीधा वेट वेट वेट। हेलो
3: हेलो
2: सलीश जी।
3: जी हाँ
2: सलीश जी, आपके लिए एक पार्सल आया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर का रास्ता कहाँ पे है?
3: मेरे घर का रास्ता पॉम्प्लेमूस।
2: ओके,
3: पॉम्प्लेमूस माउंट में है।
2: ओके, तो वहाँ पे एक मैं राइट टर्न लेना था या मुझे लेफ्ट साइड लेना था कट, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं आपके बिल्कुल घर के पास ही खड़ी हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं राइट टर्न लूँ या लेफ्ट टर्न लूँ।
3: नहीं, आप गलत टाइम पे आ गए हो, पर घर पर कोई नहीं है।
2: अच्छा ठीक है, मैं मुझे एक्चुअली कोई सुया बिहारी जी हैं, उन्होंने आपका एड्रेस दिया था, बोला था कि आपसे पार्सल लेने को, तो आप मुझे
3: मेरी छोटी बहन है।
2: हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ही दिया था, तो आप मुझे बता सकते हैं फिर मैं किस टाइम पे आऊँ?
3: अभी कैसे कह सकता हूँ, मैं तो 6 बजे घर आऊंगा
2: शाम को।
3: हाँ
2: अरे कोई बात नहीं सर। सर उन्होंने जो आपके लिए पार्सल मैं बोल रहे हैं, वो उनका साथ में एक और मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप पार्सल छोड़ दो, उनकी तरफ से आपको एक पार्सल देना है, तो मैं दे दूँ आपको सर?
3: कोई बात नहीं।
2: वेट सर, वेट वेट वेट, लीजिए।

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: हैप्पी बर्थडे सर, आपको बहुत बहुत आपके पूरे परिवार की तरफ से। इस समय आपको पता है कौन बात कर रहा है आपसे?
2: रेडियो मस्ती है।
1: रेडियो मस्ती में मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आपको लोलो हाइपर की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर मिलता है सर। और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत विशेस, हमेशा खुश रहिए, इंजॉय करते रहिए। और ये जो टाइम है आज का स्पेशल डे आपके लिए, हम स्पेशल लेकर सिर्फ यही कहने आए हैं कि आप जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, आपकी बहनें कह रही हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि हमेशा वो आपके साथ रहना चाहती है। तो

2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन 450 गो मामला की कार्यवाही चलैले बाटे। एकर में से वर्तमान में 104 गो मामला अदालत के समक्ष चलता, जबकि 1800 मामला की जांच अभी भी जारी है। ई मौजूदा संवेदनशील मामला के चलते एफसीसी के जांचकर्ता आर निदेशक थोड़ा बखत से निशाना पर हवन जाए। एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान एफसीसी के निदेशक संजय दाउधारी बतैलन कि उनकरा धमकी के सामना करे के पड़ेला। गल मार्च महीना में उनकरा एगो लिफाफा मिलल रहल, जेकर में दुगो गोली रहल आर धमकी से भरल एगो पत्र रहल। ऐसन स्थिति जांचकर्ता लोग की सुरक्षा के लेके सवाल खड़ा करेला। पेंटागन की नवा रिपोर्ट सागर समझौता में कानूनी तौर पर ही कोनो बदलाव न करता, बकीर ई जेगो गौसिया के रणनीतिक महत्व के आर मजबूत करता। ई दस्तावेज में खास उल्लेख है कि सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना खातिर एगो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर ही काम करता, खासकर ईरान के संगे संघर्ष के संदर्भ में, जहां मॉरिशस आर यूके सागर समझौता के लागू करे खातिर काम करता। हुई परी ई नवा स्थिति जेगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ल सुरक्षा निगरानी गारंटी पर ही असर डाली सकी। स्कूली छात्र लोग खातिर हाल ही एगो नवा प्रोग्राम शुरू करल जाए, जे मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित रही। ई बरिस फिरोसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एडुकेशन नामक ई प्रोग्राम शुरू करल जाता है। करते हैं तो दू हफ्ता खातिर ई पायलट स्तर पर ही चलावल जाए, जेकर में मॉरिशस रोड्रिग्स आर अगलेगा कि सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूल के 200 गो छात्र लोग शामिल हुई जाए। प्रोग्राम के मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई चलैन, जिनकरा सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव बाटे। वो अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियम के पालन और टीमवर्क जैसन मूल्य पर बल दीहन। छात्र लोग के अलावा शिक्षक लोग के भी जरूरी प्रशिक्षण देवल जाए, जिनमें दो हफ्ता के प्रोग्राम के बाद भी लोग स्कूल में लड़का लोग के बीच इस सिद्धांत के प्रोत्साहित कर सकें जा। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओकर डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार देने से समर्थन मिलता। एकर तहत कर्मचारी लोग के नवा उपकरण के इस्तेमाल खातिर तैयार करे खातिर प्रशिक्षण देवल जाता। सुरक्षा माहौल में बंदरगाह के अलग अलग काम की प्रैक्टिस करे खातिर आवत अक्टूबर महीना से लोग के एगो सिम्युलेटर उपलब्ध करावल जाए। ट्रेनिंग के मकसद है लोग के प्रतिभा जस्ती अच्छा करे के और लोग के बंदरगाह सेक्टर में हुए होला बदलाव खातिर तैयार करे के। याद रहे कि बंदरगाह खातिर नवा क्रेन की खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन 7 सितंबर के पोर्टली में एगो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर ले है। एकर खातिर 2.7 बिलियन रुपया के निवेश की घोषणा करल गल है। परियोजना खातिर एगो दूसर का चरण भी निर्धारित बाटे, जेकर तहत नवा उपकरण की खरीद खातिर ओकर पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करी। अक्टूबर महीना से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारी लोग के योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना हो जाए। मासिक तौर पर ही 20 रुपया से 40 रुपया होए। एम्प्लॉयर लोग खातिर ई कंट्रीब्यूशन 60 रुपया से बढ़ के 80 रुपया करावल जाए, जबकि स्वतंत्र कलाकार लोग के योगदान 80 रुपया से बढ़ा के 120 रुपया करल जाए। एकर संगे ही ई फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधा में बदलाव आनल जाता, जेकर खातिर 14.5 मिलियन रुपया के बजट निर्धारित करल गल है। इसब ग्रांट शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट आर विदेश में चिकित्सा सहायता जैसन खर्च खातिर उपलब्ध करावल जाला। सदस्य लोग के जस्ती अच्छा सेवा देवे खातिर टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एगो मेंबरशिप कार्ड और एगो मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करी। दूसर देश के खबर में ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर बोला था कि हॉर्मुज जलमार्ग में कालेगो तेल टैंकर पर ही हमला करल गल, जेकर बाद दूगो नाविक लोग लापता होल हवन जा, जबकि 23 गो अन्य के बचावल गल है। दूसर देने ईरान दावा कर ले बाते कि पानामा के झंडा हुलाई जहाज एगो खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर ले रहल और उ नावाल माइन से टकरा गल रहल, जेकर से उकर में आग लगल रहल। ते रहल भोजपुरी के समाचार। तो ध्यान खातिर धन्यवाद।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 10 मिनट हो चुके हैं, आप सभी का दोबारा से वेलकम है। जो भी इस समय हमें सुन रहे

0: हैं, हम तो आपको सबको यही कहेंगे गुड मॉर्निंग। जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो चलिए सीधा जानते हैं मौसम का हाल अदिति से, आज का पूरा दिन कैसा जाएगा, कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान खासकर देश के दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाली जगहों और सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों से गुजरते हुए खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर कुछ तटीय इलाकों और लगूनों पर भी पड़ेगा। इससे मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से खास सावधानियां बरतने और इन लगूनों और तटीय इलाकों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:05 पर सूर्योदय, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Béala, Wednesday Bazaar, l'orgue et winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion bidoun balle. 500 grammes carottes pour 11,95 €. 250 grammes salade crudité pour 89,95 €. Un bucket 500 grammes raisin red globe pour 99,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 109,95 €.
4: Pan Prila, Bazaar Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous winners. Yes!

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 23 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मुड़ के ना देखो दिलबरो। भाई हमको तो मुड़ के देखना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं कई लोग और घर के काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर हम आपको इतना ही बोलेंगे, 2-3-4 मिनट अपने लिए निकाला करें। 2-3 मिनट घर में अगर हैं तो थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज कीजिए। मॉर्निंग का टाइम है, अगर आपको नींबू पानी अच्छा लगता है तो ज़रूर पीजिए। अगर आपको कुछ चाय ऐसी ग्रीन टी पीने की, नॉर्मल वाली चाय तो आपने सुबह 5 या 6 बजे पी ली होगी, आप एक मिंट वाली चाय बना सकते हैं। जिंजर टी, सिंपल जिंजर डालिए, थोड़ा सा हनी डालिए उसमें और उसको ऐसे सिप सिप करके पी लीजिए, ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। पर हनी वो ना डालें जिनकी डायबिटीज़ का कुछ इशू है, तो हम उसको उनको लिए सिर्फ यही बोलते हैं, मॉर्निंग जो होती है जितनी फीकी यूज़ करेंगे, जितने विदाउट शुगर वाले बिस्किट्स, कोई चीज़ें ऐसी शुरुआत मत करो। अगर आपका दिल कर रहा है, बहुत क्रेविंग हो रहा है, तो आप दिन में किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, बट आप दिन में, रात को नहीं आपको लेना है। और अर्ली मॉर्निंग से स्वीटनेस से स्टार्ट नहीं करना है, बस सिर्फ स्वीट स्वीट बातें करनी है। अगर आपने स्वीट स्वीट बातें कर ली और शुगर को स्किप कर दिया ना, तो रियली आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और हम उन ओल्ड बुजुर्ग हमारे लिसनर्स को यही बोलेंगे कि जैसे आपके पैरों में थोड़ी सी सूजन रह जाती है या आपको थोड़ा सा चलने में तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या करना है, बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में अगर आप जमीन पर एक मैट्रेस बिछा सकते हैं, कुछ बिछा सकते हैं, तो आपको लेग्स अप करनी है, मतलब वॉल के ऊपर लेग्स करनी है। तो उसमें जो आपका, अगर लेग्स में पानी भरा हुआ है या आपको थकान हो रही है या दर्द बहुत हो रहा है, क्रैम्प्स होते हैं, तो आप 5-7 मिनट 10 मिनट अपनी लेग्स को अप कीजिए, वॉल की तरफ रखना, और आप आराम से लेटे रहिएगा। जब आप आराम से लेटेंगे, आप देखिएगा कि जब आप अपनी लेग्स को नीचे करेंगे, आपके पैरों में इतनी जो दर्द थी वो कम हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है, प्रेग्नेंट वीमेंस को बस नहीं करना है, बाकी सब जने करें, क्योंकि ये मतलब आप रेगुलर कर सकते हो, आपका दर्द बहुत कम होगा। और

0: हम उन लोगों के लिए बस इतना ही कहेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मॉर्निंग को सक्सेसफुल बनाना है तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:37 हो चुके हैं दोस्तों, मुझे बार बार सब आके बता रहे हैं बाहर बहुत ठंड है, और आपको भी हम यही बोलेंगे ठंड है तो प्लीज़ अपने आप को कवर कीजिएगा। थोड़ा हैंडसम बॉय लग रहे होगे, मुझे पता है, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल लग रहे होगे, वो भी पता है, पर अगर अपना थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जितना कवर करके रखिए, जितना ठंडा को संभाल के रखिए, थोड़ा गर्म गर्म कुछ पीजिए, कुछ खाइए, और जब खाने का टाइम आएगा तो प्रॉपर खाइएगा, डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में जितना खाए उतना अच्छा रहता है। चलिए भाई, 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत देर से सब लोग वेट कर रहे हैं। तो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं जीवन जी, कियाना, सोनी, सिद्धि, कमल, हरीश, रहमत एंड कुशाल, सभी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और आज मामू सचिन जी का बर्थडे है, नीस ओजस्वी, नेफ्यू लविश एंड मामा सीता, पापा दीवान, सिस्टर रूमा, रति, रेशमा, दीपा, सभी आपको विश कर रहे हैं। सचिन जी, आज आप तो बन गए सच में मामू, क्योंकि मामू के लिए बहुत ही रेयर मैसेजेस आते हैं, और सच में नीस और मामू का जो रिश्ता होता है ना, बहुत खूब होता है और बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि वो बिटिया रानी कहाँ जाएगी, बिटिया रानी का तो एक ही होता है, मामू सहारा। तो चलिए भाई, मैं तो कहती हूँ कि आज आपको मामू जी, आपको देना है ओजस्वी को एक प्यारा सा गिफ्ट, क्योंकि उसने आपके लिए विश भेजी है। तो हम भी यही कहेंगे आपके लिए कि भाई बहुत खुश रहें, हमेशा इंजॉय करते रहें ज़िंदगी को, आज का ब्यूटीफुल डे इंजॉय करेंगे तो हमें भी ज़रूर कोई फोटो भेजिएगा कल। चलिए जी, पूर्णिमा सेतुल जी जी का बर्थडे है आज, आज उनके पति जी ईश्वर लाल, बेटी प्रियंका, आशनी, बेटा सुदेश, सालिल, नमीश, नमीशा, आरोही, अनवी, अवनीश, आरती, विशाल, सुखा, सेतुल एंड गोकुल सिंह, भगवंत फैमिली, राम पड़तव फैमिली, सब भी ढेरों सारी बधाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ हमारी तरफ से एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा। तो भाई, हम तो हमेशा अच्छे ही गाने चलाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं लिरिक्स समझ नहीं आते हैं, पर उसमें जो डांस होता है, जो मस्ती होती है, वो ज़रूर समझ आती है। तो चलिए भाई, आप सब के लिए जिनका भी आज बर्थडे है, RM2 रेडियो मस्ती आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बेस्ट विशेज़ भेजता है। इन्जॉय कीजिएगा अपना ब्यूटीफुल डे।

0: रेडियो मस्ती।
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty in the mix.
4: Hey, bye.

0: ने किया रोर, वो लपके मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ए मामू वंस मोर।
1: अरे भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
0: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर्किट, अरे कितना मजा आया।
1: ऐसा हो गया भाई?
0: हाँ।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, खुशी के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए। कभी किसी से प्यार से बात करना, किसी की मदद करना या बस दिल से मुस्कुरा देना भी काफ़ी होता है, क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी बातें ही हमारे दिन को खूबसूरत बना देती है। इसी भी दलाई लामा जी ने लिखा है, खुशी कोई पहले से बनी हुई चीज़ नहीं है, वो हमारे अपने कर्मों से आती है। इसलिए खुशी को केवल ढूंढिए मत, उसे अपने व्यवहार में बनाए रखिए, अपनी जिंदगी में लाएं। खुशी हमेशा अपने चेहरे पर रखें, जितना चेहरे पर रखेंगे उतना जिंदगी में आएगी।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, ऐसे करते करते सुबह 5 बजे हमने शुरू किया था और ये 4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तब आप सो रहे थे, आंखें मूंदे हुए थे, कोई मचलते हुए कोई मसलते हुए आंखें आ रहा था और बस यही कह रहा था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अब देखिए उस समय सब सो रहे थे और इस समय पूरा शहर जाग रहा है, सब अपने काम पर पहुँच चुके हैं, कोई बस एंट्री लेने वाले हैं, कुछ लोग लेट होंगे, बॉस का मुँह देखेंगे और बॉस उनका मुँह देखेगा, तो क्यों लेट निकले थे। इसीलिए अब मैं निकलती हूँ और मेरे बाद आपको साथ मिलने वाला है परी का, क्योंकि ये जो मॉर्निंग है ना इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लान करके चलो आज का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाए, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सब दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अच्छा खाइएगा, अच्छा पीजिएगा, घर वापस आके अपने पूरे परिवार का साथ दीजिएगा और आराम से पसर के सो जाइएगा। चलिए भाई सुबह फिर से मिलते हैं और इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और परी को करती हूँ हेलो।
0: Morning beat. Oh God! One more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: Welcome to RM2
2: Radio Musty.
3: North, South,
2: 103.5,
3: East, West,
2: 96.4,
3: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 9 a.m. जी हाँ, समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं अदिति, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते।
5: नमस्ते श्रोताओं को भी नमस्कार। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगोगस या में के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती हैं। दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में। मॉरिशस, जहां मॉरिशस और यूके शागर समझौते को लागू करने पर काम कर रहे हैं, वहीं ये नई स्थिति जेगोगोस या मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर चलाया जाएगा।

0: जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस प्रोग्राम का मार्गदर्शन सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई करेंगे, जिनका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में बंदरगाह के अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिम्युलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा के झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नवल माइन से जा टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आगे दीजिए, नमस्कार।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, सुबह के 9:08 वेनसडे मॉर्निंग 16th of September, और आज के लिए मोटिवेशन तो यही है दैट ऑलरेडी मिड वीक तक हम पहुंच चुके हैं एंड जस्ट टू मोर डेज टू गो. सो आई डू होप कल खुद खूब सेलिब्रेशंस हुए हैं और सेलिब्रेशंस के बाद बैक टू वर्क. एंड यहां पर हम तो है आपके म्यूजिकल हम सफर. छुट्टी हो या फिर वर्किंग डे, एवरी डे को बनाते हैं हम स्पेशल, म्यूजिकल एंड मैजिकल. सो अभी के लिए तो मॉर्निंग टाइम जहां पर आप जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ. मैं हूं परी एंड इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स. अभी से लेकर दिन के 12 बजे तक होने वाला है कुछ खास स्पेशल सेगमेंट्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. 5499-1294 यही है हमारा जादुई मैजिकल नंबर जिस पर हम करते हैं आपका इंतजार. फॉर नाउ गुड म्यूजिक वेटिंग फॉर यू. स्टे कनेक्टेड और अपने दिन को स्पेशल बनाएं रेडियो मस्ती के साथ.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, वेनसडे वीक का वो पॉइंट होता है जहां मंडे का प्रेशर थोड़ा सा सेटल हो चुका होता है और फ्राइडे अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन वी आर राइट इन द मिडल ऑफ ऑल द एक्शन. ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि सोना सोना, इतना बस सुबह थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना मिल जाए तो हमें और क्या ही चाहिए. यानी कि वो अलार्म क्लॉक्स जो है वो हमारी नींद कंप्लीट नहीं होने देते, लेकिन जैसे हम कहते हैं थोड़ा सा हासिल करना है ताकि हमारी जो ड्रीम्स हैं उसे हम पूरा कर सके. सो आपकी इस वेनसडे को बनाने के लिए खास एंड स्पेशल हम हैं आपके साथ. ऑफिस जा रहे हैं या ऑलरेडी पहुंच चुके हैं या फिर अपने बिजनेस पर जा रहे हैं या फिर सिंपली आज चाय की चुस्कियों के साथ अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं, जो भी है आपके प्लान्स, हम आपको एंटरटेन करने वाले हैं विद गुड म्यूजिक ओनली राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और वैसे आज का रूल इट्स वेरी सिंपल, नो ओवर थिंकिंग, नो अननेसेसरी स्ट्रेस, बस गुड म्यूजिक, गुड एनर्जी एंड थोड़ी सी हमारी बक बक जो हम आपसे करते रहते हैं. तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर मॉर्निंग मस्ती. वैसे मस्ती मॉर्निंग्स में आपके लिए हम मस्ती वाले गाने लेकर आते हैं, बिकॉज मॉर्निंग ही तो वो टाइम होता है जहां पर आपको एक छोटा सा किक चाहिए ताकि आप पूरा दिन अच्छे से बिता सके. और जैसे हम हमेशा जानते हैं कि मॉर्निंग जैसे शुरू होती है, मॉर्निंग में आपका मूड जैसे होता है पूरा दिन वैसे ही बीतता है. सो बस कीप योर मूड गुड, कीप गुड एनर्जी अपने साथ, और हम तो आपके साथ ही है आपको एंटरटेन करने के लिए. सो स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

एग्जैक्टली दोस्तों, दिल तो चंचल है और इस चंचल दिल को कैसे हम मनाएं। मैं सभी के लिए तो गुड म्यूजिक पहुंचा रहे हैं ताकि आपका जो दिल है वो खुश रहे, और जब दिल खुश रहता है तो फिर सब कुछ ठीक ठाक ही लगता है। थोड़ी ही देर में लेकर आएंगे आपका हॉरोस्कोप, आपकी राशियां। कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड हैव

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सुबह सुबह के 9:34 जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां. शुरुआत करते हैं वैतेरीज मेष राशि. आज का दिन आपके लिए काफी सार्थक रहने वाला है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और किसी इम्पोर्टेंट काम में पॉजिटिव रिजल्ट्स आज आपको मिल सकते हैं. आत्मविश्वास भी आज आपका मजबूत रहेगा. किसी बेहद करीबी मित्र की मदद से कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता आज आपको मिल सकती है. टॉरस वृषभ राशि, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और पहले से बनाई गई जो भी प्लानिंग्स थी वो आज कंप्लीट हो सकती है. विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के करियर में ऐसा बदलाव आ सकता है जो भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और साथ ही साथ आज किसी अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो फ्यूचर में आपका अच्छा दोस्त बन सकता है. जेमिनाय मिथुन राशि, आज आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए नई प्लानिंग्स भी बना सकते हैं. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है और अप्रत्याशित धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है और किसी अपने की मदद की वजह से आज सभी काम आसानी से पूरे होंगे. कैंसर कर्क राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा. किसी समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों के साथ अच्छे से तालमेल बिठा सकेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या सहायता किसी महत्वपूर्ण काम में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी. परिवार के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है और घर का माहौल काफी खुशनुमा बना रहेगा. लियो सिंह राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा लेकिन आपकी सफलता काफी हद तक आपके व्यवहार और आपके डिसीशंस लेने के जो तरीके हैं उस पर निर्भर करेगी. अपनी सोच और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवन साथी से रिश्ते जो है वो और भी मधुर होंगे. वर्गो कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. विद्यार्थियों को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही करियर में आगे बढ़ने के रास्ते आज खुलते नजर आएंगे. लिब्रा तुला राशि, आज कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी. ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिल सकता है. आपकी बात का आसपास के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत

0: मजबूत रहेगी, लेकिन परिवार से जुड़े कुछ मामलों को नजरअंदाज ना करें यही आपके लिए ठीक रहेगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज का दिन खुशियों और पॉजिटिव घटनाओं से भरा रहेगा। ऑफिस में आपके जो कलीग्स हैं उनका सहयोग मिलेगा, उनसे तालमेल आज बना रहेगा और टीम वर्क के साथ जो काम है वो आसानी से पूरे होंगे। अचानक किसी नए स्तोत्र से धन लाभ हो सकता है और जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो आज थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएगी। सैजिटेरियस धनुराशि, आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और मजबूत होंगे और थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत यानी कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आप आसानी से आज प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में आज सुधार देखने को मिल सकता है और कारोबार के लिहाज से आज का दिन काफी लाभदायक साबित होगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। परिवार से जुड़े किसी काम के कारण थोड़ी सी भागदौड़ रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभालेंगे। ऑफिस में काम की गति बढ़ेगी और महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने की संभावना है। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज आपके सामने कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा अवसर हो सकता है और सही समय पर उठाए गए कदम आपको काफी प्रॉफिट दिला सकते हैं। किस्मत का साथ मिलने से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। परिवार में आपसी विश्वास तथा प्रेम से आज जो रिश्ते हैं थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। किसी खास काम में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। भाई बहनों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, उनमें सुधार भी आएगा और आपकी जो आपसी समझ है वो बढ़ सकती है। जीवन साथी आपकी बातों और विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे दाम्पत्य संबंधों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। व्यापार के मामलों में दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, यानी कि ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे फॉर यू। तो ये थी आज के लिए आपकी राशियां, आपकी आपका हॉरोस्कोप, और बस विश करते हैं आपको कि आज का दिन आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज एंड गुड चीजें लेकर आए। सो विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक अहेड।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

And whatever के लिए मीनाक्षी हमारा साथ दे रही हैं आप. This one goes out for you, wishing you a wonderful morning, wonderful time. Radio मस्ती के साथ इस वक्त बस में है और गानों को सुन रही हैं. So गाना goes out for you and goes out for all the drivers, conductors जो जा रही हैं from Cupip to Saint Pierre. Wishing you a wonderful time and हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप. So बस अपने दिन को enjoy करें, खूबसूरत गानों को enjoy करें. साथ ही यहाँ पर कविता जी आई हैं अपना प्यार लेकर. कहती हैं कि आज पति आनंद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उनके लिए स्पेशल विशेज, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना उनके नाम. एंड टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे आज, हैप्पी वाला बर्थडे.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check. सुबह के ठीक 10 बजे हैं. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी. श्रोताओं को भी नमस्कार. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ताओं ने मॉरिशस समंदर में उतारे गए जहाज़ों के मलबों पर एक अध्ययन चलाया है. ये बात सामने आई है कि लंबे समय तक पानी में रहने वाले मलबे मछलियों का आश्रय बनते हैं, जबकि उतारे गए नए और मजबूत मलबे कोरल्स के विकसित होने के लिए उचित जगह बनते हैं. शोध कार्यों से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार इस्तेमाल न किए जा रहे और जहाज़ों को समंदर में स्थापित कैसे किया जाए ताकि जैव विविधता के संरक्षण में भी प्रयोग मिलाए जा सके. हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है. इसके तहत कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सुरक्षित माहौल में बंदरगाह में अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा. इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना. याद रहे कि बंदरगाह के लिए नए क्रेन की खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन ने 7 सितंबर को पोर्ट लुइस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए. इसके लिए 2.7 बिलियन रुपए के निवेश की घोषणा की गई है. इस परियोजना के लिए एक दूसरा चरण भी निर्धारित है, जिसके

0: तहत नए उपकरणों की खरीद की जाएगी और उसका पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करेगी। स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू होगा जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस परियोजना का मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई चलाएंगे, जिसका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पेलगा सेबास्टोपोल में बासठ साल के 62 years old श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। आज दिन के ढाई बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के मकान रॉयल रोड पेलगा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 76 साल की 76 years old श्रीमती लक्ष्मी सिद्धयाल पैदाइशी नाम जगीसर जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पोते श्री साहिल सिद्धयाल के मकान रॉयल रोड मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

So warm welcome हमारे सभी listeners का सुबह के 10:10 perfect time और perfect morning start radio मस्ती के साथ. It's time for your मस्ती mornings. मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 12 बजे तक. For now to get you in the mood, we have this one. Good morning.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जिकाल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे संगबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में संगबा एवेस्टी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड वेल मॉर्निंग टाइम सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है क्योंकि छोटे से यानी कि थोड़े से टाइम में आप इतना कुछ कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि भाई भाग दौड़ होती है, सबको काम पहुंचने की जल्दी होती है, मैनेजर बॉस नाराज ना हो जाए इसकी सबको फिक्र होती है, लेकिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाले। जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर आप फिट एंड फाइन रहेंगे तभी तो आगे के काम हो पाएंगे। सो नेवर टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड, थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी सोचिए। अभी के लिए तो आपके दिल का ख्याल रखने हम हैं यहाँ पर, गुड म्यूजिक आप तक पहुँचाएंगे ताकि आपका दिल खुश तो आप भी खुश। सो इट्स 10:26 दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ। एंड अनीता जी फ्लाक से कहती हैं काम कर रही हूँ एंड एंजॉइंग द नाइस सॉन्ग्स, हैप्पी वेनसडे टू एवरीवन। आपको भी अनीता जी गुड ही गुड विशेज। और चलिए सात समंदर पार से हमारा साथ दे रही हैं जीना जोयसरी, आपने भी गुड विशेज पहुँचाए हैं। सो अगला गाना आपके नाम और गणपति बप्पा मोरिया, बिल्कुल सब कुछ अच्छा वो करेंगे, सबको वही संभालेंगे। सो गुड विशेज आप तक पहुँचा रही हैं, हैव अ ग्रेट टाइम जीना जी। एंड गाना होगा फॉर ऑल जोयसरी परिवार। यहाँ पर गीता जी हमारा साथ दे रही हैं, सभी बोलूराम परिवार साथ दे रहे हैं शातो बनारस से। सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है वितुला, केविन, कृष्णवी, केविश, राजेशा और साथ में है सबिता रामफल। हमारे साथ आप भी जुड़े हुए हैं, गुड विशेस पहुँचा रहे हैं टू ऑल द लिसनर्स। साथ देने के लिए शुक्रिया। एंड आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन ऐसे ही ऑन 5499-1294।

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Mustang।

0: RM2 Radio Musti.
1: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Welcome to RM2.
0: Musti Mornings, Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आजकल तो फेस्टिव सीजन चल रहा है और ट्रेडिशनल लुक की अगर हम बात करें सो ट्रेडिशनल आउटफिट में अगर एम्ब्रॉयडरी और ज्वेलरी दोनों हैवी है सो एक को आप स्टेटमेंट और दूसरे को आप सटल रख सकते हैं। ब्राइट आउटफिट के साथ न्यूट्रल एसेसरीज और पेस्टल शेड्स के साथ थोड़ा सा स्पार्कल जो है वो इंस्टेंटली आपके लुक को एलिवेट करता है। वहीं सिंपल साड़ी को स्टाइलिश ब्लाउज जैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेटमेंट स्लीव्स, एलिगेंट नेकलाइन या यूनिक बैक डिजाइन ये आप ट्राई कर सकते हैं। साड़ीज या दुपट्टा का नीट स्ट्रक्चर द ड्रेप जो है वो आउटफिट को इंस्टेंटली पॉलिश्ड और ग्रेसफुल बना देता है सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और हर चीज एक साथ पहनना जरूरी नहीं, इधर स्टेटमेंट इयररिंग्स, ब्यूटीफुल नेकलेस या फिर बैंगल्स, लेट वन पीस लीड द लुक, इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। टेक्सचर्स के साथ खेलना ये भी जरूरी होता है। सिल्क, बनारसी, चंदेरी, ऑर्गेंजा, ब्रोकेड या फिर चिकनकारी जैसे फैब्रिक्स ट्रेडिशनल लुक में डेप्थ और रिचनेस ऐड करते हैं। और जूतीज, कोलापुरी या फिर एम्बेलिश्ड हील्स जो है ये आउटफिट को कंप्लीट कर सकते हैं। कंफर्ट भी ज़रूर चेक करना है और जैसे हम कहते हैं दैट अगर आप लुक को स्टाइलिश रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको ओवरडू करें, सिंपल भी स्टाइलिश लग सकता है। सो इस फेस्टिव सीजन आपके लुक को रखिए एकदम स्टाइलिश, स्टे स्टाइलिश।

And well friends, it's 10:54 इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट आवर की ओर समाचार और उसके बाद लेकर आएंगे कुछ और प्यारे गाने 11 से लेकर 12 बजे तक we'll continue your मस्ती mornings अभी के लिए रोशनी हमारा साथ दे रही है कहती है had a great गणेश चतुर्थी and पूरे परिवार के साथ had a wonderful time now it's back to routine और enjoying the songs जुड़ चुकी हैं आप रेडियो मस्ती के साथ चलिए so wishing you a wonderful Wednesday and a wonderful day ahead साथ ही यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं कैलाश जी ओके आई गॉट योर मैसेज थैंक यू जी आप गानों को पसंद कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं जानकर अच्छा लगा साथ देने के लिए शुक्रिया और गुड विशेस आपको आपके कलीग्स को इस वक्त आप पोर्टलो इसमें हैं एंड यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स सो एवरीवन जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है इट्स टाइम फॉर गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती और इसी गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे समाचारों के बाद दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स अभी से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें From the film Gulam, we have this evergreen song. Enjoy this one.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty. Welcome to RM2.
0: Radio Musty.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Centre,
3: 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, exactly 11 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. पेंटागन की नई रिपोर्ट, शागर समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगो गौसिया के राजनीतिक महत्व को और मजबूत करती हैं. इस दस्तावेज में खास उल्लेख किया गया है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, जहां मॉरिशस और यूके सागर समझौते को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं ये नई स्थिति जेगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है. अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना होकर मासिक तौर पर 20 रुपए से 40 रुपए होगा. एम्प्लॉयरों के लिए ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किया जाएगा, जबकि स्वतंत्र कलाकारों का योगदान 80 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया जाएगा. इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे, जिसके लिए 14.5 मिलियन रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है. ये ग्रांट्स शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट और विदेश में चिकित्सा सहायता जैसे खर्चों के लिए उपलब्ध हैं. सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक मेंबरशिप कार्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करेगा. दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्यवाहियां चलाई हैं. इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच चल रही है. कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते एफसीसी के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से निशाने पर हैं. एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एफसीसी के निदेशक संजय दावधारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था जिसमें 2 गोलियां थी और धमकियों से भरा एक पत्र भी था. ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, लॉस एंजलिस में एक बस दुर्घटना का कवरेज करते हुए एक न्यूज हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया. कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, इनमें एक राहगीर भी शामिल है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. रॉयल रूट पेलगा सेबास्टोपोल में बासठ साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश

0: हमसे ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी ये अर्थ ही आज दिन के 2:30 बजे, इनकी अर्थ ही आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के मकान रॉयल रोड पिलगा सेवास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए में जिनका उन्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2:30 PM रॉयल रोड मिडलैंड्स में। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी सिद्याल, श्रीमती लक्ष्मी सिद्याल पैदाशी नाम जोगी सर, जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पोते श्री साहिल सिद्याल के मकान रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Radio Musty.
1: So well friends, warm welcome. 11:08 हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं आप on RM2 Radio Musty. So I do hope that you're enjoying your Wednesday. वैसे after Ganesh Chaturthi celebrations, now it's time back to work. आप सब पहुंच चुके हैं और कुछ लोग अभी भी celebration mode में हैं because बापा तो अभी भी यहाँ पर है. जैसे हम जानते हैं कुछ लोग एक दिन के लिए बापा को लेकर आते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन और कुछ पूरे 10 दिन के लिए बापा को रखते हैं. So अभी भी बापा विराजमान है एंड हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं. एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है कि अपना जो शेड्यूल है आप हमसे शेयर करते हैं. अभी कितने सारे लोग हमें बता रहे हैं दैट यू आर बैक टू वर्क एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, और काम करते हुए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाता है रेडियो को सुनते हुए. हमें भी अच्छा लगता है कि बस आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी होता है, इससे वर्क थोड़ा सा और इम्प्रूव ही होता है. बस आप काम पर ध्यान जरूर दीजिएगा. और अभी के लिए दोस्तों मैं हूं परी और साथ रहेगा आपका और मेरा दिन के 12 बजे तक. अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यू नो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: So taking you down memory lane with this track और यहाँ पर विजया जी हमारा साथ दे रही हैं आप warm welcome आपका on Radio Masti. इस वक्त आप कुकिंग कर रही हैं और अब आपको मौका मिला आपको मैसेज करने के लिए सो वेल आपका यामी यामी लंच रेडी हो रहा है एंड यहाँ पर हम तो आपके साथ इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि गानों के साथ आपके लंच को थोड़ा सा म्यूजिकल बना सके जो इतने प्यार से हमारा साथ देते हमारे सभी लिसनर्स थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड ऑलवेज इतना प्यार हम तक पहुंचाने के लिए ज्योति जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं जुड़ी हुई हैं आप रेडियो मस्ती के साथ हमारे अपाडू परिवार अभी अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं अब धीरे धीरे हम आफ्टरनून की ओर बढ़ रहे हैं सो सभी अपाडू परिवार दारिन श्वेता रविश पिशा एंड रवशा गाना होगा आपके नाम हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम सो ना भोला साथ दे रही हैं आप और कहती हैं दैट एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग्स स्टे कनेक्टेड विशिंग यू वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें आदमी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम एंजॉय दिस वन मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti।

It's always special. ऐसी ही हमारी प्यारी सी झाना जी हमेशा साथ देती हैं all the way from Flack. लेकर आई हैं अपना प्यार. इस वक्त काम कर रही हैं और हमारी स्वीट बातों को एंजॉय कर रही हैं. थैंक यू जी. रेडियो मस्ती सुन रही हैं आप और रिक्वेस्ट कर रही हैं एक ब्यूटीफुल गाना जिसे आप डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर रीमा जनिता सेष्टा अंशनी सिल्विया युवे कृषि शिवसरन परिवार फ्लैक से हमारा साथ दे रहे हैं. एंजॉय दिस वन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी दोपहर के 12 बजे तक एंड इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: So it's 11:42 सुबह 9 बजे से ये कारवां शुरू हुआ है जहां पर मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आए हैं आपके लिए और मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 12 बजे तक और अभी इस वक्त लीना जी हमारा साथ दे रही हैं आप प्लेन द हॉर्स से और कहती हैं आज घर पर हूं एंजॉयिंग रेडियो एंजॉयिंग द म्यूजिक डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर योर लिटिल प्रिंसेस जिया आपके हस्बैंड एंड फॉर ऑल शिवशंकर परिवार विक्रम परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं सो हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय योर छुट्टी लीना आपके लिए ऐसे ही प्यारे गाने हम चलाते रहेंगे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ऐसे ही बनाए रखेंगे एंड विजया जी कहती है कि लाइफ तो इनकम्प्लीट हो जाती है और तुम हो मेरे तो बस ये मौसम भी गुलाम अपना बिल्कुल जी हमारा ये फेवरेट गाना यारा दिलदारा फिल्म का ये गाना और बिल्कुल आप भी हमारी तरह है जहां पर हर एक लिरिक को आप एंजॉय करती हैं और लिरिक्स होते ही ऐसे हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि वाओ क्या लिखा है सो वेल विजया जी आप भी एंजॉय करें एंड हैव अ वंडरफुल टाइम आपका साथ मींस अ लॉट वेल यहाँ पर आज ब्रदर सत्यानंद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके लिए स्पेशल विशेज बेस्ट विशेज ये है फ्रॉम ब्रदर ज्ञान बिहारी वाइफ रेशमी साथ में है बेटी दिया अश्ता और कविश है योवीश सबिता रविना एंड ऑल बिहारी परिवार जो उन्हें विश कर रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर सरोजिनी नेगी ओजोल नायडू अपारू फैमिलीज जो हमेशा साथ देते हैं सो वेल एवरी

So, चलिए यहाँ पर म्यूजिक कंटिन्यूज. वंस अगेन स्पेशल विशेस टू ऑल दोस जो आज ऑन 16th ऑफ सितंबर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. फनाव कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें फ्रॉम द फिल्म सरफरोश. वी हैव दिस गाना आपके नाम. दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स. साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: And well, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. Udit Narayan, Alka Yagnik ki awazon mein ye gana aapke liye chode ja rahe hain. आ रही है नीलमणि लेकर योर रेट्रो रिदम, आपको एंटरटेन करेगी और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. एंजॉय गुड म्यूजिक.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आजू द्वारा कल चलाए गए दो ऑपरेशंस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंथु साहब में मारे गए छापे के अंतर्गत 28 और 32 साल के 2 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके यहाँ से 625 पत्तियाँ जब्त की, जिन पर एक पदार्थ पाया गया जिसके सिंथेटिक कैनाबिनॉइड होने का शक किया जा रहा है। और कल ही पॉजिटिव फ्लैक में मेबग क्यादसू ने एक कार्रवाई चलाई। 28 वर्षीय नाइजीरियाई मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,24,000 रुपए की बताई जाती है। उसे हिरासत में लिया गया। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागत समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगोगोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। इस दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, जहां मॉरिशस और यूके शागत समझौते को लागू करने पर काम कर रहे हैं। वहीं ये नई स्थिति जेगोगोसिया मिलिट्री बेस से कड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना होकर मासिक तौर पर 20 रुपए से 40 रुपए होगा। एम्प्लॉयरों के लिए ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किया जाएगा, जबकि स्वतंत्र कलाकारों का योगदान 80 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे, जिसके लिए 14.5 मिलियन रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है। ये ग्रांट शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट और विदेश में चिकित्सा सहायता जैसे खर्चों के लिए उपलब्ध है। सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक मेंबरशिप कार्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लॉस एंजलिस में एक बस दुर्घटना का कवरेज करते हुए एक न्यूज हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक राहगीर शामिल है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड कैथोसिया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री हंसराज पराग, जो बाबन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान रॉयल रोड कैथोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। टैगोर रोड रिश्मोफ्लाक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमानंद और नाथ, जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान टैगोर रोड रिश्मोफ्लाक से उठाकर

0: अंतिम संस्कार के लिए लवों चौकी शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM अतलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल की 72 years ओल्ड श्रीमती राजकुमारी बोंदा पैदाशी नाम गोकुल जो अनीता नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री दिनेश बोंदा के मकान अतलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाघोश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
3: एंड यस रेट्रो रिदम की बेल बज चुकी है। 2 बजे तक आपके लिए रेट्रो गानों का सिलसिला जारी है विद निर्मणि। तो आरएम2 रेडियो मस्ती पर स्टे कनेक्टेड।

0: रेट्रो रिदम।
1: यस, जवानी जानी मन का गाना है। और जब बात हो एवरग्रीन सॉन्ग की, तो आशा भोंसले जी की आवाज़ का जादू याद आना तो बनता है। आशा जी की आवाज़ में एक ऐसी अदा है जो एक ही गाने में मस्ती भी लाती थी, रोमांस भी और थोड़ा नखरा भी। जवानी जानी मन भी उन्हीं टाइमलेस जेम्स में से एक है, जो सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली रेट्रो हो जाता है। तो हमारे रेट्रो लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है, 2 बजे तक आपके लिए 70s, 80s और 90s की जो टाइमलेस हिट्स हैं उन सभी को चलाने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई फरमाइश है, डेडिकेशंस है या फिर मैसेजेस है किसी खास स्पेशल इंसान के लिए, 5491294 पर डोंट हेजिटेट।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे सूरज चांद और सितारे की बात ही अलग होती है। वे इतने सुंदर होते हैं कि हर गाना में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इवन डेटिंग बैक टू द अर्ली 70s 80s प्रेरणा से मिल जाती है ना जो वैसे गाने सुनते हैं। एंड लेट मी टेल यू, और भी ऐसे ही खूबसूरत गाने लाते रहेंगे इस नलमनी आपके रेट्रो रिदम में। रेट्रो यानी कि वो प्यारे गाने जो आपको दिन में तारों की सैर करा सकते हैं। तो वापस चलते हैं इस बार मूवी श्री 420 के साथ।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बीती जाए जिंदगानी, गाना जो हमें क्वेश्चन कराता है सब कुछ जो हो रहा है अभी जिंदगी में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कुछ तो एडवाइस मिला होगा गाने में, तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए मैसेजेस चेक। आप हैं वीना जी और आज हैं आपके भैया राम सागर रसी प्रसाद जी का बर्थडे, जो कि रहते हैं रिव्या जीपोस और वो है किशोरदा के बहुत बड़े फैन। उनके लिए स्पेशल गाना तो हम चलाएंगे जरूर। रेंचो दोज जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट मैसेज आया है शातू बनारस से, ज्योति जी। नेक्स्ट गाना आप मांग रहे हैं आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मैडम फैमिली के लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज वी हैव गाना हो जाए अब्दुल जी और सारा बानो जी के लिए। अरे ये तो बिना भूले चलाएंगे आपके लिए गाना फ्लैग से। जना जी कनेक्टेड है और वो एंजॉय कर रही है एंड एज यूजुअल गाना मांग रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल बेटियों के लिए, रीमा, जनिता, शेषता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सू, सरन फैमिली के लिए। एंड वी हैव अनदर बर्थडे टुडे और आज है आपके ट्विन करुणा कामिनी जी, गंगा बिसुन का। और बेस्ट विशेज मम्मी कमला की तरफ से बिनेश, नवीन, आयशा, तेजल, तनवीर, रैना और रायन जो कि रहते हैं कैथोबोन। तो हो जाए आप सभी सुनने वालों के लिए प्यार सा गाना वंस अगेन आरएमजे रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजे रेडियो मस्ती।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे ये जन्म का तो पता नहीं, लेकिन आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड बाबा डे। एंड यस, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन बाबूज को जो सिर्फ बाल नहीं काटते हैं बल्कि हमारी स्टोरीज, गॉसिप्स और सीक्रेट्स भी सुनते हैं। 60s, 70s, 80s के हेयर स्टाइल से लेकर आज के मॉडर्न लुक्स तक इन्होंने सब देखा है। एक टाइम था हेयर कट के पैसे कम थे, बाल ज़्यादा थे, और आज पैसे ज़्यादा है, बाल कम। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ और उन सभी अमेजिंग बाबर्स के लिए, क्योंकि

0: साल हो या ना हो, बाबी से कनेक्शन तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट गाना करते हैं उन सभी के नाम आप जो मिले लता जी की आवाज में। एंजॉय आपके ही रेट्रो रिदम में।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे रजनी। नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम कमीशन में परिवर्तित करने में कई चरण और मकसद भी कई। इनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना। ऐसा करने के लिए अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोहा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनार कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया। 2024 के दिसंबर महीने से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से 450 दस्तावेजों पर कार्य संपन्न किए गए। इन दिनों न्याय संस्थाओं के सामने 104 दस्तावेजें पेश की गई हैं, जबकि अभी भी करीब 1800 जांचों पर कार्य किए जा रहे हैं। कुछ नाजुक दस्तावेजें भी हैं जिनके चलते एससीसी के जांचकर्ताओं और इसके निदेशक को निशाना बनाया जा रहा है। आजसू द्वारा कल चलाए गए दो ऑपरेशंस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैतुसाबला में छापे मारे गए, जिसके अंतर्गत 28 और 32 साल के 2 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके यहां से 625 पट्टियां जब्त की, जिन पर एक पदार्थ पाया गया जिसके सिंथेटिक कैनाबिनॉइड होने का शक भी किया जा रहा है। और कल ही पसदीफ्लाक में बेबक के आजसू ने कार्रवाई चलाई। 28 वर्षीय नाइजीरियाई मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में गांजा जब्त किए गए, जिसकी लागत 1,24,000 रुपये की बताई जाती है। उसे हिरासत में रखा गया है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस की नई रणनीति सामने आई। इस बार रूस ने अपने शक्तिशाली रणनीतिक बमवर्षक विमानों के जरिए यूरोपीय क्षेत्र में एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी TU-95MS बमवर्षकों ने सागर में नॉर्वेजियन सागर के ऊपर करीब 5 घंटे तक लगातार गश्त की। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रूथ रॉयल मिडलैंड्स में 76 साल के श्रीमती

0: लक्ष्मी सिद्धयाल। श्रीमती लक्ष्मी सिद्धयाल पैदाशी नाम जो कि सर जो सांता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके रिश्तेदार साहिल सिद्धयाल के घर, श्री साहिल सिद्धयाल के घर ओत रॉयल मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM रुथ रॉयल पेलगैंत सेबास्तेपुल में 62 साल के 62 years old के श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के घर रुथ रॉयल पेलगैंत सेबास्तेपुल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्देमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM रुथ रॉयल कैथ्रसर में 62 साल के 62 years old के श्री हनराज परग जो बाबुन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर वो तैयार कथ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक में 57 साल के 57 years old के श्री प्रेमानंद ऑर्नोत जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांशिया की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM शोक में रुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: गुड आफ्टरनून, वापस आ गए हैं आपके रेट्रो रिदम की सेकंड आवर में। जी हाँ, वंस अगेन इट्स नर्मनी जो की होगी 2 बजे तक राइट हियर आपके ही आरम जो वीडियो मस्ती पर। तो चलिए इस आखिरी आवर को बनाते हैं और भी मस्ती भरा, क्योंकि लंच तो हमने कर लिया है, लेकिन अगर आप अभी जा रहे हो फॉर लंच, बन अपेटिट यू एंजॉय योर मील आरम जो वीडियो मस्ती के साथ में ही।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2

0: रेट्रो रिदम
1: वैसे ख्यालों से निकलने का टाइम है। यस, हो गया लंच और नैप टाइम भी। हमारे कुछ लिसनर्स बैक टू वर्क जा रहे हैं। पोंकुगार्ज टू यू। आशा करते हैं कि आपने पेट भर कर खाना खाया, अगर नहीं तो वापस चलिए। अरे, काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ टाइम पर खाना खाएं, हाइड्रेट करते रहिए खुद को पानी के साथ। और हम जो वीडियो मस्ती तो यहीं पर है साथ देने के लिए। ये सभी के लिए रेट्रो रिदम में 70s, 80s, 90s के गाने मिक्स मूड पर है। तो वापस चलते हैं इस बार मोहम्मद रवि साहब की आवाज़ में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे 90s के गानों की एक अलग ही बात है, एक गाना चलता है और पूरी स्टोरी आंखों के सामने आ जाती है। कभी वो स्कूल मेमोरीज याद आ जाते हैं और कभी वो पहला क्रश, एंड कभी वो कैसे था जो बार बार रिवाइंड करनी पड़ती थी गाना सुनने के लिए। और वैसे आप बताइए आपकी 90s की सबसे स्पेशल म्यूजिकल मेमोरी कौन सी है, मैसेज करके ज़रूर बताइए हमें। नौ सुबह हेलो चो लदूज जो कनेक्टेड हो चुके हैं आरएम टू वेडियो मस्ती के साथ में।
0: Retro Rhythm
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे अभी मौसम क्या कह रहा है, बारिश हो रही है, इज इट क्लाउडी? आपकी यहाँ कैसा है वेदर? कहता है क्या मौसम मैन, दैट वाज अलका याग्निक की आवाज में। ब्यूटीफुल गाना खास हमारे सुनने वालों के नाम है। जाने से पहले और भी कुछ मैसेजेस मिले हैं तो उनको पढ़ लेते हैं। साउथ में यानी कि विलनुआ से वी हैव द बर्थडे ऑफ देवरानी निर्मल जी, जो मना रहे हैं अपना स्पेशल डे। बेस्ट विशेज उनके बेटों की तरफ से, बेटी बहू गीता और ईश्वर की तरफ से। एंड आज शैलेश जी का भी स्पेशल डे है, जो कि रहते हैं मोंगू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मम्मी शारदा, दीदी अनीता, सुया बिहारी जी कुंगुमा से, एंड कैथुबोन से। जया जी ने हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई किया कि उन्हें 90s से क्या याद आता है। वो कहती है कि उनका 90s लव आशिकी मूवी से है, पहला प्यार पहला क्रश है। तो रेट्रो रिदम में बैक टू मेमोरी लेन, तो आप यही पर रहना हमारे साथ कनेक्टेड, क्योंकि दो गाने और बाकी है आपको एंटरटेन कराने के लिए, वाइब कराने के लिए। आरएम टू वीडियो मस्ती पर ही, लेट्स गो।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं. संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे रजनी नमस्कार.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. सबसे पहले स्थानीय खबरें. 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई. इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे. वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवाभाव, जिम्मेदारी और एक साथ जीना. इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस सत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम कमीशन में परिवर्तित करने में कई चरण हैं और मकसद भी. इनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना. ऐसा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है. ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोहा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिना कार्यक्रम के दौरान ये बात कही. इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के वास्ते जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया. आज सू द्वारा कल चलाए गए 2 ऑपरेशंस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पैतृसाबले में मारे गए छापे के अंतर्गत 28 और 32 साल के 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उनके यहां से 625 पट्टियां जब्त की जिन पर एक पदार्थ पाया गया जिनके सिंथेटिक कैनाबिनोइड होने का शक किया जा रहा है. और पसदेफ्लाक में मेबा के आज सू ने एक कार्रवाई चलाई. 28 वर्षीय नाइजीरियाई मूल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली मिली जिनमें गांजा जब्त किया गया. इसकी कीमत 1,24,000 रुपए की बताई जाती है. उसे भी हिरासत में रखा गया. विदेश समाचारों में गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए लापता बताए जाते हैं. इनमें बच्चे भी शामिल. मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस के बाहरी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई. प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता के अनुसार ये हेलीकॉप्टर चेथसाउथ इलाके में 2 कमर्शियल बिल्डिंग के बीच गिरा. एक व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया, धन्यवाद. कुछ ही समय में शोक समाचार. रोथ्रॉयल मिडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सिद्योयाल पैदाशी नाम जोगेसर जो सांता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे अभी से ही उनके पोते श्री साहिल सिद्योयाल के घर रोथ्रॉयल मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. रोथ्रॉयल पिलरिन सेबास्टोपोल में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के घर रोथ्रॉयल पिलरिन सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM. रोथ्रॉयल कैथ्रेसर में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री हनराज पारग जो बाबुन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर रोथ्रॉयल कैथ्रेसर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM. टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमानंद ओरनोत जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के तीन बजे उनके घर टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

सो स्वागत करते हैं एक बार फिर दोस्तों 2:11 हो गए हैं वेडनेसडे आफ्टरनून एंड यस इट्स टाइम टू वेलकम यू ऑल वंस अगेन अब लेकर आए हैं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ मॉर्निंग शो के बाद अब इट्स टाइम जहां पर आफ्टरनून में हम लेकर चले हैं आपको बी टाउन के गलियारों में क्या कुछ चल रहा है खास कौन सी मूवी है जो आजकल काफी पैसे कमा रही है काफी बातें हो रही है इस फिल्म की क्या हो रहा है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की लाइफ में और साथ में कुछ लेटेस्ट ट्रैक आपके लिए सो ये सब कुछ होने वाला है अभी से लेकर दिन के 4 तक इन योर बॉम्बे टॉकीज वेडनेसडे आफ्टरनून है आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सो जो अगला गाना है फ्रॉम द फिल्म हनुमान अंश इसके बारे में तो हमने बार बार बात की है दैट ये एक फिल्म जो बहुत ही कम बजट में बनी थी जिसमें ना कोई स्टारकास्ट थी यानी कि ना कोई बड़ी स्टारकास्ट थी ना ही कोई जाने माने चेहरे थे उसके बावजूद ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है महज 2 में बनी और अब 150 ऑलरेडी पार कर चुकी है दैट्स हनुमान अंश और उसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना पार्वती आप सभी के लिए एक फोक सा टच है इसमें एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक और आजकल तो सेलिब्रेशन मोड ऑन है और चलिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए टू गेट यू इन द आफ्टरनून मूड वेडनेसडे आफ्टरनून हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप ऑन रेडियो मस्ती इट्स योर बॉम्बे टॉकीज परी का साथ दिन के 4 तक

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले
1: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station. RM2
2: Radio Masti.
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, एक्ट्रेस मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली के जरिए धमाकेदार डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस, उसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद उनका जो करियर है वो बिखर गया। हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया। एक्ट्रेस मंदाकिनी का दाऊद के संग वायरल फोटो और उसके बाद हुई बदनामी को लेकर उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि इस विवाद से उनका करियर जो है वो कम्प्लीटली चौपट हो गया। मंदाकिनी ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ अपनी उस विवादित तस्वीर के बारे में बात की जो कई साल पहले सामने आई थी। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि उन्हें दाऊद ने नहीं बुलाया था और वो एक शो के सिलसिले में दुबई गई थी। उसी दौरान एक क्रिकेट मैच में वो शामिल हुई और वो जो तस्वीर है वो वहीं पर ली गई थी। मंदाकिनी ने कहा कि उस तस्वीर के बाद जो अटकलें और खबरें उड़ी उन पर उनका कोई भी बस नहीं था। एक आर्टिस्ट के तौर पर वो कई लोगों से मिलती जुलती है और उनमें वो कोई फर्क नहीं करती। एक्ट्रेस ने कहा कि जो भी लोग लिखना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और एक कलाकार जो है वो रोज हजारों लोगों से मिलता है। और एक बार फिर उन्होंने क्लियर किया कि वहां पर उन्हें दाऊद ने इन्वाइट नहीं किया था। मंदाकिनी का कहना है कि उस तस्वीर का असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा और उन्होंने कहा कि इस विवाद से काफी नुकसान हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि इन सब चीजों को संभालने के लिए एक टीम होनी चाहिए। मैंने हर जगह इन अफवाहों का खंडन किया। सो एक बार फिर सालों पहले की तस्वीर एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। मंदाकिनी एक्ट्रेस, ये तो हम जानते हैं कि हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल था। उनकी जो आंखें हैं वो इतनी खूबसूरत थी दैट उस टाइम पर हर कोई बस उनकी तरह दिखना चाहता था और उस एक्ट्रेस की एक झलक मिल जाए तो उनको लगता था कि वाह क्या ही आज देखने को मिल गया। सो दैट्स मंदाकिनी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये ही तो हम बात करते हैं कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। अब यहाँ पर उन्हें फेम मिला और उस फेम के बाद उनकी काफी बदनामी भी हुई। सो यही पर एक्ट्रेस ने अपने दर्द के बारे में कहा और कहा कि कैसे उनका एक जो फलता फूलता करियर था वो एक तस्वीर के चलते कम्प्लीटली बिखर गया। साथ ही उन्होंने क्लियर किया कि उस टाइम पर वो 16-17 फिल्मों में काम कर रही थी और उस फोटो के बाद उन्हें उन सारी फिल्मों से हटा दिया गया। साथ ही जितनी भी फिल्मों के लिए उन्होंने शूटिंग की थी उन फिल्मों का पैसा उन्हें कभी भी नहीं मिला।
3: जब दिल कहे

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, फिल्म हनुमान अंश, ये फिल्म जो आजकल हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, इसके रिलीज के कल मंगलवार को 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी भी चमत्कार कर रही है और बीते दिन इसने धुरंधर, पठान और छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और इसी के साथ लगी फिल्म मिर्जापुर द मूवी ये भी एक अच्छे पोजिशन में है। वहीं हैवान की हालत अब पस्त हो चुकी है और चलिए जानते हैं कि कल ट्यूजडे को किस फिल्म ने कितनी कमाई की है। सो यहाँ पर शुरुआत करती है फिल्म हनुमान अंश के साथ। 39th डे इस फिल्म ने 8.25 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बीते दिन मंगलवार को भी इस फिल्म ने दंगल मचाया है और आपको बता दें कि सिनेमाघरों में 40वें दिन इस फिल्म ने 8.5 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 231.19 करोड़ हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 291.40 करोड़ कमा चुकी है ये फिल्म। 2 करोड़ के बजट में बनी हुई ये फिल्म अभी तक इसने कमाए हैं 291.40 करोड़, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। दैट्स हनुमान अंश। और फिल्म हनुमान अंश ने 40 दिन में कितने कमाए हैं और जैसे हमने बात की कि इस फिल्म ने धुरंधर समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। सो हनुमान अंश 40th डे इसका कलेक्शन रहा 8.25 करोड़, वहीं धुरंधर का कलेक्शन 40th डे को था 2.60 करोड़। पठान की बात करें तो 40वें दिन इसका कलेक्शन था 2.55 करोड़, छावा का कलेक्शन था 1.40 करोड़ और वहीं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का कलेक्शन था 1.38 करोड़। सो ये फिल्म अभी तक सबसे आगे चल रही है और इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया है। वहीं मिर्जापुर द मूवी सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है और 4 सितंबर को इस फिल्म की रिलीज थी और उसके बाद 12 डेज का अगर कलेक्शन आपको बताएं तो इस फिल्म ने कमाए हैं 5.50 करोड़ और इसी के साथ मिर्जापुर का इंडिया का नेट कलेक्शन रहा 1.95.75 करोड़। उम्मीद है कि ये फिल्म 200 करोड़ में बहुत ही जल्द शामिल होगी। वहीं हैवान जो है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी कंडीशन में है। सैफ अली खान और अक्षय कुमार की ये फिल्म पहले वीक में काफी खराब हालत में है। पहले सोमवार इसने 70 लाख की कमाई की और वहीं कल मंगलवार 5वें दिन इसका कलेक्शन बहुत ही कम रहा और अगर नेट टोटल कलेक्शन की बात करें तो 8.77 करोड़ टोटल अभी तक इस फिल्म ने कमाए हैं। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिल्मों की तो बात हो रही है लेकिन एक फिल्म जो काफी मच अवेटेड है और वो है रामायण, जो रिलीज होने वाली है ऑन दिस दिवाली। यस, उम्मीद है दैट ये फिल्म काफी अच्छा बिजनेस करेगी। ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उसके बाद इस फिल्म का गाना भी रिलीज हुआ है। तो चलिए, रामायण की बात की है तो ये गाना हो जाए आप सभी के लिए।

So, well, much awaited film Ramayan जो release होने वाली है this Diwali on November. So, चलिए अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ latest tracks आपके लिए हम play कर रहे हैं. कुछ ऐसे गाने जो soulful भी है और कुछ ऐसे गाने जो peppy भी है. अभी के लिए जो गाना चल रहा है this is also a very popular one. मिर्जापुर की बात हुई और इस गाने को हमने एक बार फिर इसी फिल्म में सुना है. वैसे नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत ही famous song और आजकल एक बार फिर चर्चाओं में ये आ गया है after दिलजीत दोसांझ का जो वेम्बले वाला कॉन्सर्ट हुआ जहां पर इस गाने को एक साथ 92,000 लोगों ने एक साथ गुनगुनाया. सो वंस अगेन चर्चाओं में ये गाना एंड इट्स एवरग्रीन सॉन्ग. इस बार दैट्स इन द वॉइस ऑफ मधुर शर्मा डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: So, well, यहाँ पर सुपर रोमांटिक गाना है, इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर मिस्टर विनेश रामचरित एंड उनकी ब्यूटीफुल वाइफ. सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आप दोनों के नाम. सो मिस्टर विनेश एंड फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ ये गाना, और इसी के साथ विशिंग यू मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, साथ साथ मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. गुड विशेज, ये है हमारे पूरे आरएम2 रेडियो मस्ती की टीम.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: So that's a beautiful song from the film Musafir Cafe. 256 दोस्तों और इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ रहे हैं

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें रजनी से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. इन दिनों 273,000 से अधिक मॉरिशनों और रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है. इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं. इनमें से 5,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम के हैं और इनमें 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो चुके हैं. इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाते हैं. स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे. 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई. इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे. वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे जैसे कि अनुशासन, सेवा भाग, जिम्मेदारी और एक साथ जीना. इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम एजेंसी में परिवर्तित करने में कई चरण होंगे और मकसद भी इनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना. ऐसा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है. ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोरा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनल कार्यक्रम के दौरान ये बात कही. साथ ही उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया. विदेशी समाचारों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्तावों का समर्थन किया है. उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहते हैं जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं. और गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता, इनमें बच्चे भी शामिल. मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी. संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार.
1: More music in the mix.
6: Aaj Azadi hai.
0: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स वार्म वेलकम आप सभी का 3:07 हो रहे हैं साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती और लेटेस्ट ट्रैक्स अभी डाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए परी का साथ दिन के 4 बजे तक

भी सोहेल खान ने अपने घर गणेश चतुर्थी पर बप्पा बिठाए और बीते दिन विसर्जन के साथ गणपति की विदाई दी गई। विसर्जन पूजा में सलमान खान भी शामिल हुए और परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की, लेकिन आरती उतारते समय उनसे गलती हो गई। छोटी बहन अर्पिता ने तुरंत ही इस पर ध्यान दिया। सोहेल खान के घर आयोजित गणपति पूजा में अर्पिता अपने परिवार के साथ पहुंची। सलमान खान, सोहेल समेत सभी खान परिवार और उनके अन्य सदस्य भी यहां पर शामिल थे और साथ ही और कई सेलेब्स भी इस पूजा में शामिल हुए। सलमान खान जब बप्पा की पूजा कर रहे थे, इस दौरान वो आरती की थाली उल्टी दिशा में घुमा रहे थे और बहन अर्पिता ने ध्यान दिया और साथ ही उन्होंने तुरंत भाई को टोकते हुए सीधी दिशा में थाली घुमाने का इशारा किया और उसके बाद सलमान का मजाकिया अंदाज भी नजर आया, जहां पर बिल्कुल उन्होंने जो थाली की दिशा है उसे चेंज किया और उसके बाद वो आरती करते नजर आए। सलमान खान का आरती उतारता हुआ जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि अर्पिता खान बड़े भाई को उनकी गलती की तरफ ध्यान दिला रही है और इसके बाद सलमान खान ने तुरंत भूल सुधारी और मुस्कुरा उठे। पूजा करने के बाद वो भांजी आयत के पास गए और उन्हें आरती करने का तरीका समझाने लगे। इस वीडियो को नेटिजन्स काफी पसंद कर रहे हैं और जहां पर इसमें सलमान खान का मजाकिया अंदाज भी नजर आ रहा है। अर्पिता ने जिस विनम्र तरीके से सलमान खान को उनकी अनजाने में हुई गलती की तरफ ध्यान दिलाया, उसकी तारीफ भी हो रही है और साथ ही यहाँ पर भाई बहन के बॉन्ड के बारे में भी बात हो रही है। सो ये तो सेलिब्रिटीज हैं और इनकी छोटी छोटी बातें भी नोटिस होती है, लेकिन जैसे हम जानते हैं दैट खान परिवार हर साल गणपति का आयोजन बहुत ही धूमधाम से करता है। इस बार भी आयोजन हुआ और साथ में ये जो क्यूट सा वीडियो है अब हो रहा है काफी वायरल। This one goes out for all the fans of Salman Khan and of course हमारे सभी listeners के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ। 3:18 मैं हूँ परी आपके साथ, Bombay Talkies on RM2 Radio मस्ती।

दिलजीत दोसांझ आज कल चर्चाओं में आफ्टर हिज वेम्बले कॉन्सर्ट, और जैसे हमने कहा कि 92,000 पीपल पैक्ड शो उन्होंने किया इन वेम्बले, एंड साथ ही साथ उन्होंने सभी फैंस को थैंक यू भी कहा. सभी के लिए उनके सभी फैंस, फॉर ऑल द फैंस ऑफ दिलजीत दोसांझ, वी हैव दिस वन. उन्हीं की आवाज़ और उनका साथ देते हुए बादशाह, एंजॉय दिस वन फ्रॉम द फिल्म क्रू. ये गाना आप सभी के नाम.

And for now, it's time for this super romantic gana in the voice of Vishal Mishra. ये गाना हम dedicate कर रहे हैं आप सभी के नाम. विजया जी एक बार फिर हमारा साथ दे रही हैं. आवारापन का जो गाना है, it's your favorite song. After बर्बाद ये गाना बन चुका है आपका second most favorite song for now. So चलिए उम्मीद करते हैं that soon we'll have some wonderful songs जिन्हें हम ऐसे ही enjoy कर पाएं जैसे कुछ गाने हमें मिले in the film सैयारा. उसके बाद आवारापन अब उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे गाने और आए जिन्हें हम सुनना पसंद करें. और अभी के लिए ऐसे ही कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए हम चला रहे हैं. एंड फॉर नाउ दैट्स इन द वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा. सुपर रोमांटिक गाना फिल्म एनिमल और उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए. साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, with this next track, it's time for Pari to say goodbye. और जाते जाते ये जो lovely track है, इसे dedicate करेंगे ललिता जी. आपके नाम goes out for all your loved ones. सरोज, कुमारी, गीता, ज्ञान्ति, वीना और साथ में संजय, विजय, सभी जीतन परिवार के नाम, सभी देवीचंद परिवार को भी आप याद कर रही हैं. और इस वक्त अपानू परिवार आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. So this one goes out for you. And with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है हंसनी लेकर your अवतार vibes. She'll be joining in थोड़ी ही देर में. तब तक के लिए का साथ निभाइए और इन गानों को एंजॉय कीजिए राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, exactly 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें रजनी से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार श्रोताओं को
6: भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. शुरुआत हम स्वास्थ्य के साथ करते हैं. जी हाँ, मॉरिशस में लगभग 100 ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जिन्हें हृदय में किसी तरह का मालफॉर्मेशन होता है. पेड्रियाटिक कार्डियोलॉजिस्ट के दो स्पेशलिस्टों की एक टीम इन दोनों मॉरिशस में है और वे मिनी इन्वेसिव सर्जरीज कर रही हैं. इस टेक्निक की बदौलत कुछ मालफॉर्मेशन का इलाज बिना थोराक्स खोले किया जा सकता है. साथ ही अस्पताल में रहने की अवधि भी घटाई जा सकती है. वे ज्यादा जल्दी ठीक भी हो सकते हैं. अभिभावकों के लिए ये एक भारी राहत की बात है. इन दिनों 2,73,000 से अधिक मॉरिशन और रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है. इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गईं. इनमें से 5,300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है और इनमें 242 शतायु प्राप्त लोग भी हैं. इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस के लाभ उठाते हैं. स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे. 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी. इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के लिए सत्र में भाग लेंगे और इसके दौरान वे कई बातें सीखेंगे. अनुशासन, सेवा भाग, जिम्मेदारी आदि. पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी सत्र में भागने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा. विदेशी समाचारों में कोसोवो के

0: पूर्व अध्यक्ष हाशिम ताची को युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। इनमें हत्या, अत्याचार और कोसोवो युद्ध अपराध अदालत की ओर से गैरकानूनी हिरासत शामिल। 58 वर्षीय ताची को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 1990 में सर्बिया में इलाके की हिंसक हादसों के दौरान अल्बेनियन कोसोवो लिबरेशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से किए गए जुर्मों के लिए उसे दोषी पाया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उर्सुला वन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती है, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्डन ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहती है। और गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लापता, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

सो वार्म वेलकम आप सभी का 4:08 हो रहे हैं थोड़ी ही देर में हंसनी विल बी जॉइनिंग इन इट्स टाइम फॉर योर अवतार वाइब्स कनेक्टेड है आप आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ

So, well, best mix of music जिसे आप enjoy कर पा रहे हैं on RM2 Radio मस्ती. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ and shortly Hansini will be joining in. उनके खूबसूरत गानों से वो आपको enjoy करवाने वाली है, आपके दिल को बहलाने वाली है. For now we have this गाना from the film Rush. Ash King and Rizwan Ali की आवाज़ for everyone who's connected Radio मस्ती के साथ. Enjoy this one.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
0: Radio Musti in the mix.
3: वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर बिल्कुल जो एंटरटेनमेंट वाला सफर है वो बस जारी है यहाँ पर. लेकिन आपको तो पता है जो लेटेस्ट होता है, वी टू ब्रिंग यू ओनली द बेस्ट. तो यहाँ पर वक्त हो चला है टू गेट सम लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. तो चलिए हम अरविंद से मिल लेते हैं और यहाँ पर पता लगाते हैं कि क्या कुछ नया, क्या कुछ लेटेस्ट. चलिए अरविंद का हम मदर से वेलकम करना चाहेंगे. विशिंग यू अ वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद.
4: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टार्टिंग एयर बैडमिंटन के साथ. हवा कुछ ठीक नहीं चल रही है. पहले मैच में आज मॉरिशस की एयर बैडमिंटन टीम की हार हुई. बुर्किना फासो ने मॉरिशस को हराया. मॉरिशस का पहला मैच था टीम टूर्नामेंट. So 51 against 60 मॉरिशस की हार. अब आज शाम युगांडा के खिलाफ मैच है. हमारे खिलाड़ियों को संभलना होगा. याद दिला दें कि पिछली बार हम लोग 2 गोल्ड मेडल लेकर आए थे और इस बार उम्मीद है और गोल्ड मेडल जीतने के लिए. यूरोपा लीग की बात करें, आज लीग स्टेज के मैच रखे गए हैं. काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं इनमें. सबसे पहले अगारत आर्मेनिया स्पार्टा प्राग, फिर ओमोनिया सेल्टा विगो, एसी मिलान बेनफिका. यूरोप के 2 महारथी जो चैंपियंस लीग में खेलते हैं इस बार यूरोपा लीग में हैं. अंडेलेक लियों, बायर 04 सेलिए, बेर्शेवा दिनामो ज़ाग्रेब, ओलंपियाकोस यागेलोनिया, फिर स्टूम रेन संडरलैंड अल्कमार. यानी इंग्लैंड की एक टीम आज मैदान में उतरेगी. और कल बोर्नमुथ का मुकाबला रियल सोसिएदाद से. एवे मैच होगा ये बोर्नमुथ के लिए. क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला लेच पोजनन से है. बेसिक्टास मार्सेई, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच है कल के लिए. आज जो बाकी मैच है इनमें स्पेन के ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला ओसासुना से, डेपोर्टिवो एफसी सेविला, बार्सिलोना रेसिंग सांतांडर, लेवेंटे एथलेटिक. फिर इंग्लैंड में मैच खेले जाएंगे फॉर द काराबाओ लीग कप. कल लिवरपूल और आर्सेनल की जीत हुई. आज थर्ड राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में ब्राइटन का स्वागत करेगा. काफी ब्राइट नहीं है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक तो पिछला मैच हार गया था और ब्राइटन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है अभी इस प्रीमियर लीग में. लेकिन ये लीग कप है, दोनों टीमों की ओर से कुछ रिजर्व टीम खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा. एवर्टन वुल्व्स का स्वागत करेगा फ्लीटवुड टाउन. शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन. ये 11 PM किक ऑफ. अर्जेंटीना के लेजेंडरी खिलाड़ी लियोनेल मेसी के लिए फेयरवेल मैच ये बेने के खिलाफ होगा अक्टूबर महीने में. और ये फेयरवेल मैच इंटरनेशनल फुटबॉल में मेसी, जिसने अर्जेंटीना ड्यूटी से रिटायरमेंट ली अगस्त महीने में जब उसकी टीम की हार हुई थी वर्ल्ड कप 2026 में, अब आखिरी बार उसे अर्जेंटीना के शर्ट के साथ देखा जाएगा. मेसी 8 बार बालों दो विजेता, उसको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे. रिवर प्लेट के स्टाडियो मोन्यूमेंटल ब्यूनस आयर्स में 85,000 कैपेसिटी क्राउड, ये लोग साथ में होंगे फुल कैपेसिटी. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. देखना है आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अंधेरी रात या ब्राइट. मुकाबला है ब्राइटन से, ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मैच खेला जाएगा. कल सुबह रिजल्ट आपको देंगे. टिल देन एंजॉय द म्यूजिक इन रेडियो मस्ती. टेक केयर, बाय बाय.
3: थैंक यू सो मच अरविंद फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: 4:45 PM wishing you all a great afternoon सभी का हम स्वागत करेंगे ऑफ कोर्स ऑन आवर रेडियो मस्ती और अभी जो आप जुड़े हुए हो तो यहां पर हम चले आए हैं बस विद द बेस्ट मिक्स म्यूजिक जी हां हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट ऑन रेडियो मस्ती जहां पर हम सब रेडी हो चुके हैं टू बी पार्ट ऑफ रफ्तार वाइब्स यहां पर इट्स वेंसडे टाइम और वेंसडे आफ्टरनून को थोड़ा सा और हैप्पीयर एंड डेफिनेटली मोर म्यूजिकल बनाने के लिए तो यहां पर जुड़ जाइए हमारे साथ तो काम हो कॉलेज हो या फिर ट्रैफिक हो या फिर घर में कुछ काम हो रहा है सो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो सफ़र है हम तय करने वाले हैं बिल्कुल आपके साथ सो अ वंडरफुल एंटरटेनमेंट बस इंतज़ार कर रहा है आपके लिए आफ्टर 7 PM फॉर आज का रफ्तार वाइब्स तो जो हॉर्न है थोड़ा सा कम कर लीजिए पेशेंस से ज़्यादा रखिए और जहाँ पर ट्रैफिक जाम इस समय है लंबी कतार है और बीच में आप फंस गए हो तो कोई बात नहीं आराम से इत्मीनान से आप ड्राइविंग को संभालें क्योंकि यहाँ पर म्यूजिकल सफ़र को हम संभालने वाले हैं आपके साथ जुड़ गई है हंसनी एंड आई बी विद यू अप टू 7 PM तो जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है चलिए हम सभी का वार्म वेलकम करते हैं
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Right, to keep listening to Radio Musti. This is our musical show. This is the Raftar Vibes. जहाँ पर साथ जारी है हमारा और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ने वाले हैं न्यूज़ की तरफ एंड या श्रीना इज ऑल सेट फॉर द न्यूज़ सो वार्म वेलकम टू यू श्रीना और ये जो गाना है स्पेशली आपके लिए राइट सो माय डियर फ्रेंड्स जहाँ पर भी आपका साथ जारी है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन जॉइन अस यहाँ पर सफर को और भी दिलचस्प बनाने के लिए टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल यहाँ पर हमारे गाने आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट हियर द वन एंड ओनली रेडियो मस्ती जो आप लोगों के साथ है

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसा कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए आ दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसा लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Enzo, mo pou arrange mo la case. Enzo, mo pou faire rénovation. Sa zou la, c'est Côte Métrique. Depuis les 1er jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7-6 prises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, Côte Métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
5: Dans quelques heures, les machines du loto feront leur show. Approximativement 15 millions de roupies au loto et environ 21 millions de roupies au loto plus. 21 millions de roupies au loto plus. La chance n'a pas sa place sur la route. N'accélérez pas, ralentissez. Mieux vaut arriver quelques minutes plus tard que prendre un risque inutile. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
6: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
7: Radio Musty.
8: It's a Raftar Vibes on a Radio Musty and celebrating this Wednesday aapke saath. वेंसडे यानी कि हफ्ते को यहाँ पर बिल्कुल हम पहुँच गए हैं फॉर द मिड वीक, यानी कि हफ्ते को यहाँ पर वो पड़ाव जहाँ पर मंडे की थकान थोड़ी सी कम हो चुकी है और फ्राइडे वाला जो इंतज़ार है ना शुरू हो चुका है। और अगर आपका दिन काम, पढ़ाई या ट्रैफिक की भागदौड़ में बस गुजर रहा है तो थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए एंड हमारे साथ जुड़ जाइए ना। ऑफिस वालों के लिए

0: Maybe आज का दिन that was quite hectic. Maybe दिन भर के लिए आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर लैपटॉप पर जो आपकी नजरें हैं वो टिकी रही, तो जरूरी है टू टेक अ ब्रेक, राइट? इसकी वजह से हम लेकर आते हैं ओनली द ग्रेट सॉन्ग्स, ताकि यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है वो बस हो जाए सबके लिए. और मे बी इस समय ओवर टायर्ड आप हो. यहाँ पर मंडे से लेकर कल तक जो प्रार्थनाएं हुई है गणपति पूजा के लिए, जो बस प्रिपरेशन शुरू हो चुके थे सिंस लास्ट वीक वी कैन से, और कल धूमधाम से विसर्जन भी हुआ है, तो कई लोग इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मे बी आज वो थकान आप महसूस कर रहे हो, तो बिल्कुल ये तो होने वाला ही है. तो यहाँ पर विल मेक इट द बेस्ट टू मेक इट अ बिट ईजी आपके लिए. अपनी सारी जो चिंताएं हैं कुछ मिनटों के लिए आप भूल जाइए. मूड आपका थोड़ा सा खराब है तो कोई बात नहीं, हम फुल कोशिश करेंगे कि अगले कुछ मिनटों के लिए उसे बेहतर कर दें, राइट? सो इसीलिए हम लेकर आएंगे द बेस्ट सॉन्ग्स टू एंटरटेन यू एंड टू मेक यू फील हैप्पी. यहाँ पर ढूंढ लीजिए वो एक रीज़न, हाँ एक ही काफ़ी है यहाँ पे वो वजह टू बी हैप्पी. बस उनको याद करें एंड मेक इट अ बिट लेट्स से लाइक लाइट. दिन भर के लिए काफ़ी बिजी आप रहे, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ शुरू हुई सुबह से, कितनी सारी भागदौड़ी हुई है, लेकिन अभी टाइम टू टेक अ म्यूजिकल ब्रेक, और इसके लिए बिल्कुल पूरा इंतजाम हमने कर लिया है ऑन आवर रेडियो मस्ती. सो बी विद अस, यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ है. आई बी विद यू, साथ साथ ही चलेंगे 7 बजे तक.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

Alright, do enjoy your happy drive हमारे साथ with Radio Masti. And a special hello to all our drivers जो यहाँ पर strongly connected है just to make us like a bit more easy. ये musical show हम set कर रहे हैं आपके लिए. Hello to lovely Prema ji, कैसी हो? Wish you a very good afternoon. यहाँ पर as always, hard work continues. So आपके लिए और सभी पलट families के लिए भी we have got a special track coming up. Thank you so much for connecting as always with Radio Masti. तो यहाँ पर हंसनी आपके साथ है and we continue with our magical show. वैसे यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे तो आगे जो है फंस जाएंगे क्योंकि still having like a few line. कतार में आप हो, ट्रैफिक जाम चल रहा है, जहाँ पर भी आप इस समय फंसे हुए हो, सो मेक श्योर कि थोड़ा सा और पेशेंस आप मेंटेन कर रही हो क्योंकि कुछ ही पल में आप घर वापस जाएंगे. मुझे पता है कि सुबह से यू नो आप घर से दूर हो और अपनों से

0: जीतने की जल्दी तो है ही, सबको जल्दी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस, राइट? और हम तो कहेंगे लाइफ में स्पीड इम्पोर्टेंट तो नहीं होती है, डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रोड पर भी सेफ ड्राइव कीजिए और लाइफ में भी अपने सही डायरेक्शन पर आप फोकस रखिए। कीप गोइंग, जहाँ पर आपको सही लगता है बस उसी राह पर आपको चलना है। वैसे अगर आज का दिन परफेक्ट नहीं था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, परफेक्ट डे का वेट मत करें, जो है उससे दिन को और बेटर बनाने की कोशिश आप कर लीजिए। अगर कोशिश करेंगे टू बी हैप्पी तो बस अपने आप जो हैप्पीनेस है वो बस उनका दरवाज़ा खुल जाएगा। शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया आज का दिन, नहीं जा रहा है आज का ये सफ़र, तो परेशान मत होइए, क्योंकि वजह तो है, मे बी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इसीलिए आज ये दिन कुछ ऐसा है आपके लिए। तो इसके लिए भी कोशिश यहाँ पर होगी इस आफ्टरनून को सेट करने के लिए। कभी कभी बस एक छोटा सा ब्रेक, एक प्यारा सा गाना और किसी अपने से अच्छी बातचीत, ये पूरा दिन बदल सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे, मे बी समथिंग वेरी स्पेशल, शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है, शेयर करने से आप खुश रहेंगे। सो वाई नॉट, यहाँ पर हंसनी है एंड आई बी वेटिंग, आपका इंतजार हम करने वाले हैं ऑन 549-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
3: Let us have आज के फैशन टिप्स. अगर आप नेवी ब्लू शर्ट को स्टाइलिश तरीके से आप पहनना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ आसान फैशन टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाली हैं. तो अगर आपके पास है नेवी ब्लू शर्ट, वार्डरोब से आपने निकाल लिया है या फिर स्टिल है इन योर वार्डरोब, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. अगर कई दिनों के लिए आपने नहीं पहना है, सो यू कैन लाइक ट्राई इट. ये जो लुक है थोड़ा सा हम बदलने की कोशिश करेंगे. तो नेवी ब्लू शर्ट के साथ अगर आप चूज़ करेंगे बेज या खाकी ट्राउजर्स, तो नेवी ब्लू के साथ क्लासी और बैलेंस्ड कम्बिनेशन ये तो है. अगर आप बेज को चुनते हैं ब्लू के साथ, इट्स जस्ट लाइक अ वाव चॉइस. या फिर आप चूज़ कर सकते हैं वाइट निवन क्रीम जो कलर होते हैं पैंट्स, अगर आप इनके साथ पहनना चाहते हो तो एकदम फ्रेश और स्मार्ट कैजुअल लुक ये आपके लिए बिल्कुल तैयार हो गया है. वाइट या फिर क्रीम वाले पैंट्स के साथ आपका एकदम क्लासी वाला नेवी ब्लू शर्ट. लाइट ब्लू जीन्स ये भी फिट होता है, ये वी कैन से फॉर अ कैजुअल आफ्टरनून आउटिंग के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है. ग्रे ट्राउजर्स ये भी आप इनके साथ मैच कर सकते हो ऑफिस या सेमी फॉर्मल लुक के लिए. सोफिस्टिकेटेड चॉइस है आपका ग्रे ट्राउजर्स प्लस योर नेवी ब्लू शर्ट. और

0: चॉइस की बात करें तो व्हाइट स्निकर्स ये कैजुअल एनिकडम यू नो जवान लुक के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो ये तरीका सो यू कैन ट्राई इट व्हाइट स्निकर्स के साथ आपका नेवी ब्लू शर्ट. कुछ एक्सेसरीज के बारे में बात कर ले, ब्राउन लेदर बेल्ट या फिर वॉच अगर ये ऐड करेंगे आप पर तो ये भी इट विल ऐड ऑन टू योर लुक्स. और लेट्स से मिनिमल सिल्वर एक्सेसरीज अच्छे लगते हैं आपके नेवी ब्लू शर्ट के साथ अच्छे जाएंगे. एंड आफ्टरनून लुक के बारे में बात करें तो मे बी आज कोई ऐसा इवेंट है, एक छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला है आपके फ्रेंड्स के साथ परिवारों के साथ. सो नेवी शर्ट प्लस आपका बेज पैंट्स या फिर क्रीम भी आप बिल्कुल पहन सकते हो प्लस योर व्हाइट स्नीकर्स, एक सिंपल एकदम क्लीन वाला कॉम्बिनेशन रहता है. और इवनिंग लुक के बारे में बात करें तो नेवी शर्ट प्लस ग्रे या फिर ब्लैक ट्राउजर्स तो यहाँ पर ज़्यादा रिफाइंड लगेगा. तो आज का एक क्विक टिप हम आपको देते हैं, नेवी ब्लू काफ़ी वर्सटाइल है तो इसके लिए बहुत सारे एक्सेसरीज या बहुत कंट्रास्टिंग कलर्स जोड़ने से बजाय या यहाँ पर दो से तीन कंप्लीमेंटरी कलर्स तक रखना बेहतर रहता है. तो ये थे कुछ आसान टिप्स टू मेक योर लुक मोर क्लासी एंड मोर एलिगेंट.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: राइट बी म्यूजिकल ऑन रेडियो मस्ती एंड यहाँ पर इट्स आवर म्यूजिकल सफर ऑफ रफ्तार वाइब्स. तो यहाँ पर चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर अब जहाँ पर बिल्कुल आपके फ्री टाइम में आपने रेडियो मस्ती को बस याद किया है एंड विद योर मैसेजेस चलिए अपने शो को हम आगे बढ़ाते हैं. बिहार प्रीति हमारे साथ फ्रॉम अमोरी, वार्म वेलकम टू यू. आज आप दाल पका रही हो, वेरी नाइस डिनर. सो कुराज फॉर योर कुकिंग टाइम. यहाँ पर गाना आपके सब परिवारों के लिए चल जाएगा. थैंक यू फॉर शेयरिंग. चलते हैं फ्लैग जना जी के यहाँ जहाँ रेडियो मस्ती इज ऑन अ फुल वॉल्यूम. तो यहाँ आपका स्वागत डेफिनेटली. और पन्ना की तमन्ना ये चल गया है, व्हाट अ कॉन्फिडेंस. ये आपके लिए था फॉर रीमा जनिता शिस्ता अंशिनी सिल्विया यूवी कृषि और पूरे सुसरन परिवार के लिए भी. दैट वॉज अ स्पेशल वन. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती. और यहाँ पर हैविंग अ हॉट टी और आई वांटेड कॉफी एक्चुअली, लेकिन अभी मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ. आप नीताशा ये तो है, आप मस्त चाय को एंजॉय करो और हम यहाँ पर म्यूजिक को संभालेंगे और क्या चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट इवनिंग अहेड. काम से घर वापस है तो आप पहुँच गई हो घर सेफ एंड साउंड एंड ये चाय ना हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है. बिल्कुल सही, अगर आप चाय लवर हो तो ये बिल्कुल आपके लिए. एंड हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद रेडियो मस्ती. वी हैव इट नेक्स्ट फॉर मनीषा के लिए. यहाँ पर पापा जी को विश कर रही हैं हैप्पी बर्थडे और उनके पापा का नाम है अमृत लाल जी. हैप्पी बर्थडे आपको, गुड विशेस है, बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपके लिए फ्रॉम माई वाइफ प्रेमिला, फ्रॉम प्रिंस, फ्रॉम शिवा, शनव, प्रणव, सान्यम, शिक्षा और बाकी जो परिवार है सब की तरफ से प्यार है आपके लिए. मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऐसे ही आप खुश रहिए. यही शुभकामनाएं लेकर आई है प्यारी सी बेटी मनीषा. तो आप भी अपनों को याद करें. दिस इज अ शो जहां पर ये दोस्ती होती है, ये अपनापन हमारा होता है एंड विल बी वेटिंग. आपका इंतजार यहां पर होता रहता है. हंसनी इस है आपके साथ ऑन 5499 1294 पर हम करेंगे आप लोगों का इंतजार.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती, स्टे वेल कनेक्टेड। अभी कुछ ही पल में हम बढ़ने वाले हैं समाचार बुलेटिन की ओर, और इसके बाद बिल्कुल मुलाकात हमारी होगी इन द थर्ड आवर ऑफ आवर शो। सो स्टे वेल ट्यून्ड, ड्राइव करते समय प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे कॉशियस।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life.
1: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
3: North, South,
1: 103.5.
3: East, West,
1: 96.4.
3: Center,
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Wish you all a very good evening. Check your time. Shaam ke theek 6 baje hain.

0: सुर्खियां इस प्रकार है। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 9 ग्रेड 8 के 200 बच्चे सप्ताहों में एक सत्र में भाग लेंगे। 2 सप्ताहों के लिए निर्धारित है और कई वर्षों के बारे में वे सीखेंगे अनुशासन, सेवा भार, जिम्मेदारी आदि। अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, इसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग। मंत्रालयों और नियमबद्ध अधिकारियों को भी अपनी पहल करने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्रवाई का नाम ऑपरेशन जीरो डिपो। आज पोर्ट लुइस में इससे संबंधित जानकारियां दी गई। क्या मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं? पहले से ही एक कानूनी ढांचा है, लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हॉश सैकड़ों देशों में मौजूद और उसने एक गैप एनालिसिस सरकार साकार किया ताकि ये पता लगा जा सके कि देश में किन चीज़ों की कमी। गोपी इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात। मुख्य रूप से मॉरिशस को एक वैश्विक कैपिटल का स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बातचीत, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित चर्चा। और विदेश समाचारों में 16 सितंबर विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है। इस वर्ष का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। नमस्कार, एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है। एक पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि अनुशासन, सेवा भाग, जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भागने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अब पर्यावरण और सफाई की बात करते हैं। अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस है, जिसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा मंत्रालयों और नियमबद्ध अधिकारियों को भी अपनी अपनी पहल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन जीरो डिपो रखा गया है। आज पोर्ट लुइस में इससे संबंधित जानकारियां दी गई। दासापल सोमी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: भूमि की सीमित उपलब्धता, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के आयात पर भारी निर्भरता, बढ़ता जल संकट

0: और तटीय कटाव मॉरिशस की पर्यावरणीय लचीलापन का विश्लेषण इस पॉलिसी ब्रीफ में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कंट्री टीम के अनुसार मॉरिशस की 11% आबादी मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है। खेती योग्य भूमि की चुनौती से निपटने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026-2027 के बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। यदि मॉरिशस अपनी लगभग 75% उपभोग के लिए आयात पर निर्भर है तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25x35 पहल शुरू की है। इसके तहत प्रमुख कदमों में 2035 तक कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल दुगुना कर 25,000 एकड़ तक करना था और विदेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है। जल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की टीम का कहना है कि मॉरिशस जल संवेदनशीलता के मामले में सबसे अधिक और सबसे कम संवेदनशील देशों के बीच लगभग मध्य स्थिति में है। हालांकि पूर्वानुमानों के अनुसार देश को 2030 तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2050 तक वार्षिक वर्षा में 13% की कमी होने का अनुमान है। इससे जल की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता पर दबाव और बढ़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी के लिए पानी तक पहुंच कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही जल सेवाओं के लिए बजट में 338.5% की वृद्धि की गई है। वनों की कटाई भी चिंता का एक प्रमुख विषय है। देश का केवल 23% हिस्सा अभी भी वनों से ढका हुआ है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम के आंकलन के अनुसार वन क्षेत्र में कमी हमें अत्यधिक गर्मी की लहरों से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित करती है और जल संचयन और जल धारण क्षमता को भी कम करती है। मॉरिशस को तटीय कटाव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की 17.6% तट रेखा पहले ही इससे प्रभावित हो चुकी है। अध्ययनों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में 2050 तक तट रेखा 5 से 25 मीटर तक पीछे हट सकती है। हालांकि यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम ने पहले से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है, फिर भी उसने जल के अधिक कुशल उपयोग के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर के विकास की सिफारिश की है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को मजबूत करने और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने की भी वकालत करती है। इसके अलावा स्थल और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत नियोजन एवं प्रबंधन को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।
1: बच्चे स्कूल न जाकर अन्य जगह जाते हैं, ये समस्याएं नौजवानों में पाई जा रही है। इससे निपटने के वास्ते कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर पेश है विवरण।
0: फ्लक में फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की इस शाखा में गुमशुदा मामलों की जांच की जाती है। इनमें 16 वर्षीय इस लड़की का मामला भी शामिल है। एक रात 7 बजे वो फ्लक स्थित अपने घर से क्यूपिप के लिए निकली थी। लापता मामलों में 75% मामलों में लड़कियां शामिल हैं। ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्कूलों में युवकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई बच्चा अपना पारिवारिक घर छोड़कर चला जाता है।
2: Majorité, c'est une fille qui est fuguée. Et la raison principale qui fait se taler, c'est à cause de...
0: Sajid Brenda qui dit que c'est la plupart des filles qui ont été lapatées ont été lapatées. Et la plupart des raisons, boyfriend ka mamla hota hai. Larkiyan apne boyfriend ke yahan chali jati hai. Iske pashchat jab ye log apne ghar wapas lauti hai, tab nabalik ka sharirik sambandh mein par jane ka mamla khara hota hai. Dusre karan bhi paye jate hain, jaise ki parivarik tanav, abhibhavak का ज्यादा सख्त होना, बच्चों पर दबाव डालना, माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बच्चों का ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या शांत शांत रहना आदि। ये सूचनाएं नियमित रूप से मीडिया में प्रसारित की जाती है। ऐसा ही एक मामला 17 वर्षीय लड़की का है जो पिछले 4 महीनों से लापता है। कई माता पिता अब भी ये मानते हैं कि किसी के लापता होने या घर से भाग जाने की सूचना देने से पहले 24 घंटे इंतजार करना जरूरी है।
3: सर्जन त्यभंड अकेदू कहती है नाबालिग के मामलों

0: में जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की जाती है, पर इसके साथ साथ अपनों के यहाँ जांच करने की भी सलाह दी जाती है जहाँ बच्चे अक्सर जाया करते हैं। हम लोग इन जगहों पर अपनी तलाशी शुरू करते हैं। अगर परिवार को इसकी जानकारी है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लड़की के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 8 सितंबर तक फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड ने लापता होने के 193 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 181 युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जबकि 12 अभी तक लापता हैं। 2025 में नाबालिगों के लापता होने के 199 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 9 नाबालिग अभी भी लापता हैं।
1: और सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के लिए सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। अनाबेल वुल्बिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
2: नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 16 से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस पहले संस्करण में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के निर्माण के लिए एक ऐसा प्रोग्राम सहायक होगा जो नौजवानों को साथ ले आए ताकि वे सीखने के साथ साथ जिम्मेदारियों का अनुभव कर पाएं। संविधान या सरकारी ढांचों के बारे में जानने के अलावा वे देशभक्ति के बारे में भी सीख पाएंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियाँ और प्रशिक्षण होंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल कार्यक्रम होगा।
3: हम
2: नौजवानों को सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे वे नेक कार्य के लिए साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, हम ये सिखाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, टीम स्पिरिट और समुदाय के प्रति जुड़ाव विकसित करना है। हम चाहते हैं कि छात्र खुद सीख कर दूसरों को समझाने में सक्षम हो। रेक्टर को भी नाइस में सिखाए गए मूल्यों की याद दिलानी होगी। इस पायलट संस्करण में कई संस्थाएं शामिल हैं और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रगति और संचालन की समीक्षा की जा सके और इसे ज्यादा छात्रों के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
1: चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। मॉरिशस में लगभग 100 ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जिन्हें हृदय में कोई कुरूपता होती है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के 2 स्पेशलिस्टों की एक टीम इन दिनों मॉरिशस में है और वे मिनी इन्वेसिव सर्जरीज कर रही है। इस टेक्निक की बदौलत कुछ मालफॉर्मेशन का इलाज बिना थोराक्स खोले किया जा सकता है, साथ ही अस्पताल में रहने की अवधि भी घटाई जा सकती है। वे ज्यादा जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये एक भारी राहत की बात है। पेश है ये विवरण।
2: 10 महीने के इस शिशु की सर्जरी मंगलवार को की गई। जब वो 21 दिन का था तो डॉक्टर को उसके दिल में छेद का पता चला। उसके माता पिता के लिए ये बहुत मुश्किल रहा। उसके दिल में 2 छेद थे। हमने इलाज जारी रखा और डॉक्टर ने बताया कि एक विदेशी टीम सर्जरी के लिए आएगी। डर तो लग रहा था लेकिन डॉक्टर ने ठीक से समझाया और हम आगे बढ़ पाए। 4 दिनों के अंतराल में कुल 25 मिनी इन्वेसिव कार्डियक सर्जरीज की गई। दिल की धड़कन में अजीब आवाज थी, छोटी थी तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बेहोश हो गई और परीक्षण करने पर दिल में छेद का पता चला। इलाज हो पाया है, ऑपरेशन सफल रहा। इनका संबंध मात्र बच्चों से नहीं, 39 साल की अनुष्का को उसकी बीमारी के बारे में बहुत

0: बाद में पता चला। दो तीन साल पहले इसका पता चला, कल सर्जरी हुई और आज मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। दुनिया भर में हृदय संबंधी असामान्यताओं के मरीजों का मार्गदर्शन करने वाली बरतानी संगठन हीलिंग लिटिल हार्ट्स प्रोग्राम के तहत इन मरीजों का इलाज हुआ, जिसके जरिए स्पेशलिस्ट की टीमें सार्वजनिक अस्पतालों में स्वयं सेवा भाव से ऐसे ऑपरेशन करते हैं और अपनी विशेषज्ञता बांटते हैं। हमने करीब 4000 सर्जरीज की हैं। कैथेटर के जरिए बच्चों की सर्जरी करते हैं। हम 2016 से मॉरिशस आ रहे हैं। ये हमारा 9वां या 10वां दौरा होगा। हर बार हम 25 से 30 ऑपरेशंस करवाते हैं, सभी इसी टेक्निक से। मिनी इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी की जाती है, जिसके तहत मरीज को काटना नहीं पड़ता है। इस टेक्निक से दर्द कम होता है, बच्चे जल्द ही ठीक हो जाते हैं। सामान्य सर्जरी में बच्चों को कई हफ्तों या एक महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन कैथेटर से सर्जरी कराने वाले बच्चे दूसरे ही दिन घर वापस जा सकते हैं, कुछ उसी दिन वापस जा सकते हैं। मॉरिशस का ये 10वां दौरा इस बार बुबा सेंट रोज़ेल के रोटरी क्लब के सहयोग से संभव हो पाया है।
1: यासिन धर्माबोध की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, क्या हम मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं? पहले से ही एक कानूनी ढांचा है, लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी गौश सैकड़ों देशों में मौजूद है और उसने एक गैप एनालिसिस साकार किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में और किस चीज़ की कमी है। तो क्या हम क्लिनिकल अनुसंधान में नया चरण पार करने के लिए तैयार हैं? अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट पर विवरण करना लालू।
2: किसी नई दवा, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरण या उपचार से पहले उसकी जांच करना, यही उद्देश्य है क्लिनिकल ट्रायल्स का। मॉरिशस में 2011 से क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के तहत ऐसा किया जाता है। अब अधिकारी इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। 2026 में अपनाए गए क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के सुधार का उद्देश्य क्लिनिकल रिसर्च की प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले परीक्षणों को बढ़ावा देना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसी संदर्भ में स्विट्जरलैंड की दवा और वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गौश ने अपना गैप एनालिसिस रिपोर्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स प्रस्तुत किया। क्लिनिकल ट्रायल की बेहतर समझ के लिए गौश मदद कर सकती हैं। एक योजना बनाई गई है ये दिखाने के लिए कि कैसे ढांचे कायम किए जाए, कौन सी जानकारी सूचित करे, ताकि मॉरिशस हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त कर सके। क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर काम पहले ही शुरू हो चुका है। पॉम्पलेमुस के सचिव सागराम गुलाम हॉस्पिटल में हृदय रोग के 23 मरीज फिलहाल एक ऐसे परीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक नई चिकित्सा उपकरण की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस रिपोर्ट से जान सकेंगे कि क्या बेहतर करना है। प्रशिक्षण, लैबोरेटरी, फार्मेसी, मूल ढांचे और सुरक्षा को लेकर मकसद पब्लिक अस्पतालों में नए इलाज की बेहतर पहुंच है। लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? डॉक्टर निशान नंदलाल ने कहा, प्रतिस्पर्धा का मतलब सुरक्षा में ढील नहीं। ये रिपोर्ट यह आश्वासन देती है कि जो भी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल हो। दक्षिण अफ्रीका में उदाहरण के लिए स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं के जीवित रहने की दर करीब 40% है। वहीं अधिक विकसित स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देश में ये दर 80% है। मॉरिशस में भी कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच नए क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। शमीमा पाटिल कहती हैं, मॉरिशस में साल में स्तन कैंसर के 700 नए मामले बहुत ज्यादा हैं। रोड्रिक्स में भी वृद्धि है, हम काफी पीछे हैं, इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। करीब 6 महीने में क्लिनिकल ट्रायल्स का विस्तार मधुमेह से पीड़ित मरीजों तक भी किए जाने की उम्मीद है। आखिरकार इस

0: इस शोध का मकसद सिर्फ एक नया उपचार खोजना नहीं बल्कि उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश भी है जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है।
1: ग्रुप यू इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। मुख्य रूप से मॉरिशस को वैश्विक कैपिटल का एक स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बात की गई, जैसे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित। इसके अलावा मॉरिशस में हर दो वर्ष युवा संगठन की एक बैठक लगाए जाने पर भी बातचीत चली। फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और फ्रांस और थाईलैंड के नए राजदूत एकापल पुल पिपत ने आज स्टेट हाउस रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के साथ रस्मी मुलाकात की। फ्रांसीसी राजदूत समुद्री सुरक्षा पर आदान प्रदान मजबूत करना चाहते हैं। उधर थाईलैंड की तरफ से व्यवसाय, निवेश और कृषि एवं खाद्य सेक्टर में आदान प्रदान के विकास को बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया जा रहा है। इन दिनों 2,73,000 से अधिक मॉरिशनों एवं रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गईं। इनमें से 5,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है और इनमें से 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो गए हैं। इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाती हैं। स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। 16 सितंबर को विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है। इस वर्ष का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनेप की नवीनतम वैज्ञानिक आंकलनों से पुष्टि होती है कि यदि वर्तमान नीतियां बनी रहती हैं तो अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत के 266 तक, आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और शेष विश्व में 2040 तक 1980 के स्तर पर वापस आने की उम्मीद है। ये उपलब्धि वैश्विक सहयोग की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। विवरण करुणा लालू।
0: विश्व ओजोन दिवस के मौके पर 16 सितंबर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपनी ओजोन बुलेटिन जारी की। इस दिन 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों को याद किया जाता है जिसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता मिली। इस वर्ष की थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर ए कूलर प्लैनेट यानी कि ठंडी धरती के लिए वैश्विक कार्रवाई। प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है। 2016 में हुए किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के इस्तेमाल में चरणबद्ध कमी लाने का प्रावधान किया गया। HFC ऐसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं जिनका इस्तेमाल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के विकल्प के तौर पर किया जाता है। इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की कई कूलिंग तकनीकों में होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इंसुलेटिंग फोम और कुछ चिकित्सा तथा औद्योगिक उपकरणों में भी। पिछले 4 दशकों में वायुमंडलीय निगरानी से नियंत्रित ओजोन क्षयकारी पदार्थों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित उत्सर्जन भी सामने आए हैं। इनमें CFC 11, HFC 23 का उत्सर्जन शामिल है। इसीलिए वायुमंडलीय निगरानी अभी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को जरूरत के मुताबिक लक्षित नियामक कदम उठाने में मदद मिलती है।
1: विदेश समाचार। कोसोवो के पूर्व अध्यक्ष हाशिम ताची को युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। इनमें हत्या, अत्याचार और कोसोवो युद्ध अपराध अदालत की ओर से गैर कानूनी रूप से हिरासत शामिल। 58 वर्षीय ताची को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 1990 में सर्बिया में इलाके के हिंसक हादसों के दौरान अल्बेनियन कोसोवो लिबरेशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से किए गए जुर्मों के लिए उसे दोषी पाया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने EU का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उर्सुला वन डर लेयन ने यूरोपीय

ने संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती है, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नर ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं। गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लापता हुए, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शव और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी है।

मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। मॉरिशस में ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी है, जो गुरुवार 17 सितंबर 2026 को दिन के 10 बजे तक लागू है। मस्कारिंस के दक्षिण में काफ़ी ज़ोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंड हवा बह रही है और मौसम भी हवादार है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रह रहकर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश भी होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। ऊंचाई पर अगर कोई कार्य है तो इससे बचने की मांग की जाती है, साथ में सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र बहुत खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी, 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये लहरें तटीय इलाकों तक भी और निचले इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं। इस तरह मच्छरों से, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों से और लोगों से मांग की जाती है कि वे समुद्र में न जाएं और तटीय इलाकों में भी समुद्र तटों पर न जाएं। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय सुबह 6:04 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 6:04 पर। मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने टेक्निकी सहयोगियों लुडोविक और कोविला को। कुछ ही समय में शोक समाचार। तमिल टेंपल रोड क्लेमेंसिया में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुचिता मोती पैदाशी नाम गोपाल सिंह, जो मीनाक्षी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह 10 बजे उनके घर तमिल टेंपल रोड क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एमिली स्ट्रीट सेंसिलिया में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चुरामन लोहर पैदाशी नाम दुखी, जो मैडम जयराम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अजय लोहर के घर एमिली स्ट्रीट सेंचिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11 AM। जानकी स्ट्रीट होशनो में 42 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री धूसन रिडोई, जो जाकी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके पिता श्री धर्मवीर रिदोई के घर जानकी स्ट्रीट होशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11:30 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी बोंदा पैदाशी नाम गोकुल, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी

0: थे कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री दिनेश बोंदा के घर अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 1 PM। शुक में रुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2

0: 6:35 PM यस ये जो टाइम आया है बस कुछ आराम फरमाने का टाइम आया है इट्स रफ्तार वाइब्स और सड़क पर आप रफ्तार बस पकड़ रही हो टू गेट बैक होम ये तो हमें पता है घर को जाने की सबकी जल्दी है दिन भर के लिए जो थकान है वो बस आपको घर ही जाना है जहां पर आपको सुकून मिलने वाला है So we're here to maintain the peace and harmony जहाँ पर भी साथ जारी है हमेशा Radio Masti is here to keep sending all the positive vibes और हम तो कहेंगे अगर आपकी मंजिल अभी दूर है तो टेंशन मत लीजिए एक बात तो है कि एक एक किलोमीटर करके ही जो लंबी जर्नी है ना वो कंप्लीट होती है सो डोंट टेक ऑल द टेंशंस अगर है कुछ कोई स्ट्रेस जो आपको परेशान कर रहा है दिल भारी है तो अभी दिल को हल्का कर लीजिए Radio Masti is here to take away all the stress यहाँ पर जो छोटी बातें हैं जिससे आपकी खुशियां जुड़ी होती हैं तो उन्हीं पर आप फोकस कर लीजिए कभी बड़ी बड़ी बातें जो है दिल को परेशान कर लेता है राइट सो लेट्स मेक इट अ बिट मोर इजी यहाँ पर ऊपर वाला है ना यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ ऑल हम बस क्यों इतने स्ट्रेस लेंगे या जो स्ट्रेस है जो तकलीफ है जहाँ पर दिल कुछ भारी हो गया है बस उन्हें पर छोड़ लेते हैं वो डिसाइड करेगा क्या कुछ कब करना है राइट गाइडिंग लाइट वो बनकर आएगा एक ना एक दिन आएगा और वो आपका दिन जरूर आएगा ये तो हमारा बिलीफ है सो वी आर हियर टू मोटिवेट यू वी आर हियर टू एनकरेज यू जहाँ पर भी हालात कुछ यू नो थोड़ा सा लो हो गया है सो वी आर हियर टू मेक यू फील लाइक स्ट्रॉन्ग बैक और क्या यहाँ पे जो हमारा रेडियो है वो बन जाता है ना आपका और हमारा हम सफर सो जॉइन अस एंड make it a beautiful safari until 7 p.m. with Arjun Hansani yahan par saath jaari hai hamara wishing you all a great time a great evening jahan par bhi saath aap nibha rahe ho na let's make it a bit more musical let's make it a bit like more happy and of course we'll be welcoming kuch aapke messages as well pyar se kuch aap kahenge to hum sunenge we'll be welcoming you 105.9 to 12.94
1: raftar vibes filmy rides
2: rm2

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
2: All about good music, all about entertainment, all about Raftar vibes, जो चल रहा था आपके लिए. हम सजा रहे थे वो द ग्रेट सॉन्ग्स. तो अभी कुछ कूल डाउन, अभी कुछ रिलैक्सिंग टाइम आ गया है टू टेक अ ब्रेक एंड टू मेक इट अ बिट हैप्पियर. यहाँ पर दिव्या आएगी. दिव्या का साथ रहने वाला है फॉर आज का इवनिंग लाउंज. सो कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स अगेन ऑन रेडियो मस्ती. मुलाकात तो होगी, जल्द ही होगी दोबारा हमारी. तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ. एंड जितने भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, आज रात भर आपका शिफ्ट होने वाला है टू वर्क टू बी ऑन ड्यूटी. सो हमारी पूरी टीम की तरफ से आई डू विश यू बॉन कुराज, ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग.

ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें वो दिल ही क्या बस तेरा प्यार नहीं जिसमें और प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए जहां पर वो शख्स नहीं तो हम भी नहीं भाई देखिए हमारा प्यार तो सच्चा वाला प्यार है इसलिए तो आप हैं और हम हैं आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं थैंक यू सो मच दिल से आपको शुक्रिया हमेशा हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहते हैं आपके सामने क्योंकि आप लोग इतना प्यार बरसाते हैं कि वी कांट हेल्प इट बट सेइंग थैंक यू अगेन एंड अगेन चलिए शाम के 7:08 हो चुके हैं एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम महान सिनी के बाद अभी दिव्या की बारी आ गई है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए टू ऑल दोज जो इस वक्त मॉरिशस के अंदर है या फिर रोड कनेक्टेड हैं एंड आई एम जस्ट श्योर कि आप अगर सात समंदर पार से हमें सुन रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि हर एक गाना सुनने के बाद यू विल फील नॉस्टैल्जिक और साथ में थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू योर रूट्स तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है और मोहब्बत तो शिद्दत वाला हमने की है आप लोगों के साथ इसीलिए तो बार बार बहाने ढूंढ कर आ ही जाते हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए और वैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप पूरे दिल से चाहो तो उसको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है तो प्यार अगर सच्चा है तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा और अगर आपका इंतजार सच्चा है तो प्यार बाद में आपको हासिल होना ही होगा चलिए यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड डोंट फॉरगेट वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ये आपके मैसेजेस हमारे शो जब आता है तो आप लोग हमारे शो पे चार चांद लगा देते हैं सो कीप सेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन द मैजिकल नंबर विच इज 5499-1294 इवनिंग लाउंज इवनिंग

चलिए दोस्तों 7:22 हो चुके हैं. टोल दोज हैविंग देयर मील राइट नाउ. आपको विश करेंगे बना पे शिशु बहार. चलिए आपके कुछ और खूबसूरत मैसेजेस की ओर हम जरूर बढ़ेंगे. एंड रागिनी आपने हमें मैसेज भेजा है, कहती हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग द सॉन्ग फ्रॉम बाजीगर. इट्स वन ऑफ योर फेवरेट्स एंड विल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्लीज प्ले फ्रॉम गाना फ्रॉम द फिल्म तेजाब सो गया ये, जहां अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाने की कोशिश करेंगे. As usual, we have हमारी प्यारी सी सुया बिहारी जी connected with us. Good evening. Hope all is well. और रेडियो मस्ती के साथ आप जुड़ी हुई है from morning to evening. अभी आप खाना बनाते बनाते हमारा साथ दे रही हैं. To all those जो हमेशा हमारे गाने सुनते सुनते खाना बनाते हैं, आप लोगों के लिए तो हमेशा I have something to say that आप किचन में खाना नहीं प्यार बना रही हैं. So चलिए उतने ही प्यार से आप अपने परिवार को ये खाना परोसिएगा और उतने ही प्यार से हमें सुनते सुनते अपने खाने को enjoy करिएगा. Next Gana goes out for Bhaiya Sailesh. आज उनका birthday है and wishes coming from बहन सुया. तो Bhaiya Sailesh को हमारी पूरी team की तरफ से आपको very very happy birthday. चलिए हंसु के लिए एक प्यारा सा message यहाँ पर आया है. कल फिर आना हंसिनी, फिर message करेंगे. तो चलिए thank you so much. आपका ये message हंसिनी तक जरूर पहुँचाएंगे. और दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. उम्मीद करते हैं कि हमारे गाने आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. कुछ 90s गीतों के बीच में कुछ 2000 के गाने एंड ऐसे ही नॉन स्टॉप ये म्यूज़िकल कारवां चलता रहेगा. और हमेशा हम कहते हैं ना कि इवनिंग्स होते ही हैं बहुत ही स्लो, ताकि आपको थोड़ा सा और मौका मिले इस वक्त को पूरा पूरा इसका एडवांटेज लेने के लिए. एंड इन स्लो इवनिंग्स में सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए कि आप अपने मोबाइल को एक तरफ रखें, फैमिली मेम

0: मेंबर्स के साथ थोड़ा सा आप बात करिए एंड कम्युनिकेशन इज द की टू अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. और जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज हस्बैंड एंड वाइफ या फिर किड्स एंड पेरेंट्स, इट्स ऑलवेज कि कभी कभी बहुत ही दिनों के बाद आपके दोस्त मिल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करते रहते हैं और जितने भी बचे कुछ कॉन्वर्सेशन होता है, जो गुड कम्युनिकेशन होता है, वो हाथ से निकल जाता है. सो ट्राई टू मेक योर बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग. आज आप ज़रूर अपने मोबाइल को एक तरफ रखें एंड स्पेशली हमारी गीतों को एंजॉय करते रहिए एंड ट्राई टू फॉल इन लव वंस अगेन.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: 7:35 हो चुके हैं। चलिए कुछ और आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। एंड चलिए ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल गाना। और इस गाने में अगर आप कहीं से भी अपने फीलिंग्स को कैच कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसे ही फीलिंग्स उभर कर सामने आ रही हैं। एंड अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, दिल का हाल सुनने सुनाने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए किसी ने हमें मैसेज भेजा है, हेलो विद्या जी। अरे विद्या जी नहीं बल्कि दिव्या सादरी ही है, कोई बात नहीं, कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम, नाम आपने गलत लिखा, कोई बात नहीं, बस प्यार वैसे का वैसा होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गुड इवनिंग आपको भी नीतीश रामदिकल, आप मोताई ब्लॉन्च से आप हमें पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपकी आवाज को, कोई बात नहीं, आप अभी जुकाम हो गया है और क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसा तो होता रहता है। थैंक यू सो मच नीतीश फॉर योर कॉन्सर्न। एंड ऐसे लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जो सिर्फ डेडिकेशन नहीं बल्कि आप हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी आवाज़ के बारे में पूछ रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट एंड इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। थैंक यू वंस अगेन नीतीश। एंड चलिए नेक्स्ट गाना गोज़ आउट स्पेशली आपके नाम, क्योंकि आपने इतना प्यार दिखाया है आपके मैसेजेस के जरिए कि हम बहुत बहुत ही ग्रेटफुल और बहुत ही लकी समझते हैं कि आप जैसे लिसनर्स भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। और लगे हाथ आपने अगला गाना डेडिकेट किया हुआ है स्पेशली हमारी प्यारी सी परी के लिए, प्यारी सी हंसनी के लिए, साथ में आपकी प्यारी मामा मिला रामदिकल के लिए जो इस वक्त हमें सुन रही है और डिनर कर रही है। तो चलिए आपको बनापिची शुभाहार। नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना संगीता जी के लिए और उनके परिवार के लिए फ्रॉम मोताई ब्लॉन्च। धन्यवाद आपको भी साथ देने के लिए। एंड चलिए साथ में एक और मैसेज आया है और आप कहती हैं नमस्ते एंड गुड इवनिंग दिव्या जी, गुड इवनिंग आपको भी। आज मेरे भैया सत्यानंद का बर्थडे है और इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है उनका बर्थडे। बेस्ट विशेज फ्रॉम भैया ज्ञान बिहारी, उनकी बहन है मानती दयवंती, उनकी वाइफ है रेशमी, बेटी दिव्या, आस्था, कविश, योवेश, रवीना, नेहा, सभी बिहारी फैमिली की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग देयर स्पेशल स्पेशल डे टुडे, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। नमस्ते दिव्या जी, होप यू डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच राधा जी हमारा साथ देने के लिए। ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, लवली प्लेलिस्ट एज यूजुअल, हैप्पी हैप्पी वेंसडे आपको। मुझे लगता है कि आपने दूसरा मैसेज ऑलरेडी फॉरवर्ड किया है एंड दिन तो आपने यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि आज तो वेंसडे है और आपने हमें हैप्पी फ्राइडे कहा है, कोई बात नहीं। डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू ऑल योर फैमिली इन कनाडा, मॉरिशस एंड ऑल आरएम टू लिसनर्स। साथ में वी हैव श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाक्वे। डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर हबी रोशन फ्रॉम वाइफ श्वेता, वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई लव हिम सो मच। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.

Radio Masti. सच ए ब्यूटिफुल वंडरफुल गाना तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं लेकिन प्यार में आप बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिएगा क्योंकि यू नीड टू राइज इन लव प्यार में हमेशा आपको जीने के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि जब किसी को प्यार होता है ना तो उनको जो जीने का जज्बा होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है इसलिए आप बस अपनी जिंदगी पे फोकस कीजिए और जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने पे फोकस कीजिए और प्यार से तो जिंदगी और भी खूबसूरत तो हो जाती है इसको और खूबसूरत बनाने के लिए बस चाहिए थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा मैजिक इट्स ऑलरेडी 7:55 चलिए इस गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज जहां पर एक बार फिर से दिव्या का साथ है टिल 9 PM

तेरा चेहरा ने देखूं अगर रोशनी मेरे किस काम की। लास्ट आवर का पहला गाना कुछ ऐसा ही था कि वो आंख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, एंड प्यार को ऐसा ही होना चाहिए और इसकी फितरत भी इतनी खूबसूरत होती है कि प्यार में लोग अच्छे के लिए बदल जाते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ फॉलिंग इन लव। और अगर कभी भी आपके दिमाग में ये आया कि प्यार में दिल दुखता है,

0: लगता है और चोट पहुंचता है तो मे बी यू आर इन लव विद द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि प्यार का बस एक ही डेफिनेशन होता है, वो ये है कि प्यार अपने आप में ही एक मैजिक है और लव डजंट हर्ट, लव हील्स.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.
0: वेल फ्रेंड्स, 8:10 हो चुके हैं. एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रही है इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं. ये ना सोचे कि हम आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं. बिल्कुल कुछ ही देर में हम आपको ज़रूर पैम्पर करने का ये सेगमेंट रखेंगे, जहां पर विल बी रीडिंग योर डेडिकेशंस ऑन 5499 1294. तो कभी भी अगर आप उस पार से हमारा साथ रहे हैं और आपका भी मन हो रहा है हमें याद करने के लिए, सो डेफिनेटली ड्रॉप योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.

यकीन मानिए शायद आपको नहीं पता आपको क्या हो रहा है, लेकिन राइट बिफोर यू नो योर हार्ट नोज इट ऑल, आपका दिल सबसे पहले ही उसको पता चल जाता है कि आपको प्यार हुआ है। और हमेशा हम कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा बहुत जंग छिड़ जाता है जब प्यार होता है, लेकिन हमेशा जीत दिल की ही होती है, बिकॉज योर हार्ट माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड बट इट्स ऑलवेज राइट, ये हमेशा हम कहते हैं, क्योंकि दिल की सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है एट टाइम्स। चलिए 8:23, टाइम इज फ्लीटिंग, बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये वक्त निकल रहा है, स्पेशली जब रोमांटिक गीत चलते हैं ना तो इवनिंग थोड़े और स्लो हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये वक्त थम जाए, और ऐसे ही आंखें बंद करके हर एक रोमांटिक गीत को ऐसे ही महसूस करते रहे और प्यार की दुनिया में खोए रहे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम वक्त को कहे कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, बट ऑल वी कैन डू इज़ कीप टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टाइम। और कहते हैं ना कि टाइम वेल स्पेंट इज़ मेमोरीज़, आप शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं लेकिन इन छोटे छोटे पलों में ही आपको मेमोरीज़ क्रिएट करने को मिलता है, तो चलिए इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा। वेल बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर। हेलो दिव्या जी, नमस्ते, मुझे भी जुकाम हो गया था 8 दिनों के लिए। वाओ, 8 दिनों के लिए, दैट्स टू मच। प्रकाशवती जी, साधनी के लिए थैंक यू सो मच, आपके वहाँ मौसम काफ़ी कोल्ड वाला है और आप कहती हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ प्रकाशवती जी, आप भी अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, एंड सेंडिंग यू लोड्स ऑफ वार्म हग्स एंड लोड्स ऑफ लव। तो चलिए आप सेफ रहे और हमारे साथ रहे, एंड कीप एंजॉइंग द लवली गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग दिव्या जी, हेलो टीना जी, कैसी हैं आप? हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, इट्स सीजनल फ्लू, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। अब कितना भी ध्यान क्यों ना इंसान रख ले, कभी कभी ये जुकाम होकर ही रहता है, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आप अपनी तरफ से अपना पूरा प्रिकॉशन लेते रहे, एंड यस आप सॉल्ट वाटर के साथ भी गागल करते रहे अगर आपको ये परेशानी है। एंड चलिए, यहाँ पर आपने इतने प्यारे मैसेज भेजे हैं, देखकर हम इतना हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, फॉर योर लव, गेट वेल सून, थैंक यू। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल योर लव्ड वंस एंड टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं, आपको भी शुभरात्रि एंड बहुत सारा प्यार आपको। नमस्ते सिस्टर, प्लीज़ ऐड माय नेम, बदुआ।

0: विदेशी जी, कोई भी गाना, बिल्कुल कोई भी गाना नहीं, हर गाने पे आपका ही हक है एंड हर एक गाना आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे। हाई दिव्या, प्रीतम बी टू फ्रॉम पी टू, हेलो जी, कैसे हैं आप? नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर योर वाइफ वर्षा, एंड बहुत ही जल्द वर्षा का काम खत्म होने वाला है और घर वापस आने वाले हैं, एंड इन द मीन टाइम आप RM2 सुन रहे हैं एंड लविंग द सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। तो प्रीतम जी, ज़रूर आपकी वाइफ जब आएगी ना तो उनको एक प्यारी सी हंसी के साथ उनका वेलकम करना, और डोंट फॉरगेट एक टाइट हग भी ना, इट वर्क्स वंडर्स और ये मैजिक की तरह काम करता है, शायद इसी वजह से इसको जादू की झप्पी कहा जाता है।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: Well, we have this beautiful Sagana Kamal Khan, Sadna Sargam ki awazon mein. दिल्ली जिसे अपना कहा मूवी से लिया गया और सच में दिल जिसे भी अपना कहता है ना, आपको दिल की बात मान देनी चाहिए।

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर आप अपनी कीमती चीज़ दे पाओ तो वो है आपका वक्त. टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रीशियस. और रश वाले टाइम में अगर सबसे ज़्यादा आप उनको याद करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी एक्स्ट्रा स्पेशल. ये नहीं कि जब भी टाइम बहुत हो आपके पास तभी जाकर आप कहें कि चलो भाई पूछ ही लेते हैं कि हाल चाल कैसे हैं और साथ में दो प्यार भरी बातें भी कर लेते हैं. प्यार ये नहीं है, प्यार ये है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में भी वक्त निकालें और उनको याद करें जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. चले इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. उतने ही प्यार से कल मुलाकात करेंगे. ऑफ कोर्स प्यार क्या है तो निभाना तो पड़ेगा ही. छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हैं जन्नी तुषा के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

बिग हेलो टू ऑल माय लिसनर्स, गुड इवनिंग, नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। लेट नाइट ग्रूव्स में आपका स्वागत है। आइए साथ निभाते हुए 3 घंटों के सफर को खूबसूरत यादगार बनाते हैं।

जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर उन पलों से बनती है जो हम अपने करीबी लोगों के साथ बिताते हैं। महंगी जगहों पर जाना, बड़े तोहफों देना या शानदार दावतें करना जरूरी नहीं है। कभी कभी घर के आंगन में बैठकर की गई छोटी सी बात, चाय के साथ बांटी गई हंसी और बिना किसी वजह के साथ बिताया गया वक्त ही दिल को सबसे ज्यादा सुकून देता है ना। मौसम

क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद रहना नहीं होता, इसका असली मतलब है एक दूसरे को पूरी तवज्जो देना, दिल से सुनना, अपनी बातें बांटना और उस पल को महसूस करना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने ही लोगों के बीच रहकर भी उनसे दूर हो जाते हैं। सो सैड। हाथ में मोबाइल होता है, दिमाग में काम की फिक्र होती है और दिल में कल की चिंता। ऐसे में अपनों के साथ बिताया गया सच्चा वक्त किसी तोहफे से कम नहीं होता।

वक्त टाइमलेस यस। वैसे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मौके ढूंढे, साथ बैठकर खाना खाना, दिन भर की बातें करना, पुरानी यादों को फिर से याद करना, या फिर किसी फिल्म को मिलकर देखना। भाई ये सब रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि एक दूसरे के दिल की हालत भी समझ में आती है।

बात हो रही है बात क्वालिटी टाइम, तो डेफिनेटली माँ बाप के साथ बिताया गया वक्त जिंदगी के सबसे बड़ी दौलत होती है। उनकी बातों में तजुर्बा है, उनकी खामोशी में प्यार और उनकी दुआओं में ब्लेसिंग्स में हमारी पूरी दुनिया बसी होती है। कभी उनके पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनना, वाह हमको तो दादा दादी नाना नानी की याद आ गई है। उनके साथ चाय पीना या बस उनका हाल पूछना भी उनके लिए बहुत मायना रखता है। हो सकता है कि हमें ये छोटी बात लगे, लेकिन उनके लिए हमारा वक्त ही सबसे कीमती वक्त होता है, तोहफा होता है। तो डेफिनेटली उस मौके को आप गवाइएगा मत।

अब बड़े हो गए माता पिता बच्चों का भी साथ निभाना होता है ना। उनके साथ बिताया गया वक्त बहुत खास होता है। बच्चे महंगी चीजों से ज्यादा अपने माँ बाप का ध्यान और साथ चाहते हैं। उनके साथ खेलना, उनकी कहानियां सुनना, उनके सवालों का प्यार से जवाब देना और उनकी छोटी छोटी जीत पर खुश होना उनके दिल में सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। बचपन के ये पल उनकी यादों का हिस्सा बन जाते हैं और बड़े होकर भी उन्हें अपने घर की गर्माहट महसूस रहती है।

दोस्तों की जब बात होती है, वक्त की बात जब होती है, तो पूरा परिवार समाया होता है। भाई बहन के साथ बिताया गया वक्त अक्सर शरारतों, नोकझोंक और हंसी से भरा होता है। कभी एक दूसरे से लड़ना, फिर कुछ ही देर में साथ बैठ जाना, पुरानी तस्वीरें देखकर हंसना और बचपन के किस्से याद करना, ये सब रिश्तों में एक अलग मिठास भर देते हैं दोस्त। भाई बहन के बीच की दोस्ती दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत रिश्तों में से एक होती है।

यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड नीतू आपके साथ विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. वैसे दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम का अपना ही मजा होता है. दोस्तों के सामने हम बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह सकते हैं, है ना. उनके साथ की गई हंसी, बेकार सी बातों पर की गई मस्ती और मुश्किल वक्त में मिलने वाला सहारा जिंदगी को हल्का बना देता है. कभी एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर घंटों बातें करना भी किसी बड़े सफर से ज्यादा यादगार हो सकता है.

आह दोस्त परिवार, सच्चे दोस्त तो वो ही है जो हमारी खामोशी भी समझ लेते हैं। उनके साथ हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं।

पड़ती। हम जैसे हैं वैसे ही उनके सामने रह सकते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब यही है कि हम एक दूसरे के साथ बिना किसी दिखावे के मौजूद रहे। कभी कभी सिर्फ साथ बैठना ही बहुत होता है, क्योंकि अपनापन शब्दों का मोहताज नहीं होता।

चलिए उस रिश्ते की बात करते हैं जो आपको भी अच्छा लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। एक दूसरे के साथ बिताया गया वक्त रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करता है। रोज की जिम्मेदारियों, काम, घर के बीच अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के लिए वक्त शायद निकाल नहीं पाते, लेकिन एक साथ खाना खाना, शाम को सैर पर जाना, पुरानी यादें याद करना या एक दूसरे की बात बिना बीच में रोके सुनना रिश्तों में नई जान भर सकता है। प्यार सिर्फ बड़े वादों से नहीं बल्कि रोज के छोटे ध्यान से ही जिंदा रहता है ना?

0: कभी कभी हम अपने करीबी इंसान के साथ होते हुए भी उन्हें पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उनके साथ बैठे हुए काम के बारे में सोचते रहते हैं या उनकी परेशानी को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा क्वालिटी टाइम तब होता है जब हम अपना ध्यान पूरी तरह उस इंसान पर लगाते हैं, उनकी बात को समझना, उनके जज्बात की इज्जत करना और उन्हें महसूस कराना कि वो हमारे लिए कितने जरूरी है। यही असली अपनापन है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सपनों के साथ बिताया गया वक्त हमें जिंदगी को असली कीमत समझाता है। पैसा, काम या सफलता जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन इन सब का मजा तभी है जब उन्हें बांटने के लिए अपने लोग मौजूद हो। अगर घर लौटने पर कोई हमारा इंतजार करता है, हमारी खुशी में खुश होता है और हमारे दुख में हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ता है, तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और अगर आप उनमें से हैं, देन आप कितने खुश नसीब है शायद आप ही नहीं जानते हो।

कभी परिवार के साथ सफर पर जाना भी बहुत यादगार होता है। आप ही याद करो कब लास्ट टाइम अपने परिवार के साथ एक साथ गए हुए थे कहीं। सफर के दौरान की गई बातें, रास्ते में रुककर खाया गया खाना, एक दूसरे की तस्वीरें लेना और छोटी छोटी परेशानियों पर मिलकर हंसना, ये सब पल बाद में जिंदगी की खूबसूरत यादें बन जाती है। सफर की मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है कि हम रास्ते में किन लोगों के साथ चल रहे हैं।

ये तो हर वक्त हर दिन त्योहार समान होता है, क्योंकि आप हमारे हमसफर जो रहते हैं, हमारे परिवार जो हो, और त्योहारों का समय भी अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बेहतरीन मौका होता है। घर की सफाई, मिलकर पकवान बनाना, सजावट करना, अभी तो हमने गणेश चतुर्थी भी मनाई है, पूजा पाठ करना, एक दूसरे को बधाइयां देना, रिश्तों में गर्माहट भर देता है। त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाई का नाम नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ खुशी बांटने का भी नाम है जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। मुश्किल वक्त में अपनों के साथ बिताया गया वक्त और भी मायने रखता है। जब इंसान परेशान होता है तब उसे हमेशा

उत्साह की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे सिर्फ किसी अपने की मौजूदगी ही चाहिए होती है। एक हाथ कांधे पर, एक भरोसे भरी नजर और कुछ तसल्ली के शब्द दिल को बहुत हिम्मत दे सकते हैं। ऐसे पल रिश्तों को गहरा बनाते हैं और हमें बताते हैं कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं।

जिंदगी के आखिरी दौर में हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तब हमें अपनी नौकरी, पैसा या सामान से ज्यादा वो पल याद आएंगे जो हमने अपने करीबी लोगों के साथ बिताए थे। इसलिए ये आज ही अपनों के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी हंसी का हिस्सा बनिए और उन्हें महसूस कराइए कि वो आपकी जिंदगी में कितने खास हैं, क्योंकि असली खुशी वही है जो अपनों के साथ बिताए जाए और असली दौलत वही है जो यादों के रूप में दिल में हमेशा जिंदा रहे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड योर डियर वंस। बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते